मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून 2026। अभी सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं

ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की

0: सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 6:05 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

सुप्रभात और प्रातः वंदन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम लिए मैं अमित श्रीमाली आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।

प्रभु स्मरण से दिन की शुरुआत हो जाए तो जीवन की हर राह आसान हो जाए। भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि मन की शांति और आत्मा का संगीत भी है। जब मन ईश्वर के नाम में रम जाता है तब जीवन की कठिनाइयां भी छोटी प्रतीत होने लगती है।

दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोए। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। ईश्वर का स्मरण केवल विपत्ति के समय ही नहीं, बल्कि हर पल होना चाहिए। यही स्मरण हमारे जीवन को सकारात्मकता और संतुलन प्रदान करता है।

प्रातःकालीन भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना में आज बस इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका दिन मंगलमय हो, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मुझे अमित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान का पाठ और उसके बाद खेती में आज। सवेरे 7 बजे सदाबहार नगमे आप सुन पाएंगे और उसके बाद आप सुनेंगे गांधी दर्शन 7:45 पर। सवेरे 8 बजे समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़ का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 8:30 बजे आप सुनेंगे उदयपुर का दैनिक और पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, माफ़ कीजिएगा नमस्कार उदयपुर। और उसके बाद 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर से प्रसारित होंगे। 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम उमंग। 10 से 11 बजे फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे।

राजस्थानी संगीत से सजा हुआ कार्यक्रम गोखड़ा 11 बजे प्रसारित होगा। 11:30 बजे सुगम संगीत, 12 से 1 बजे फिल्म संगीत और दोपहर 1 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर से प्रसारित होंगे। 1:05 पर महिला श्रोताओं का कार्यक्रम महिला जगत प्रसारित किया जाएगा। 1:45 पर फिल्म संगीत के साथ में विकास चर्चा आप सुन पाएंगे।

6:05 पर फिल्म संगीत और 6:30 हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे। शाम 7:00 खेती और घर, किसान भाई बहनों का कार्यक्रम, कृषि एवं पर्यावरण का संबंध, एग्रोमेंट एडवाइजरी योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना पर चर्चा होगी, साथ ही खेत किनारे वर्षारोपण पर भी बात की जाएगी। शाम 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:45 पर समाचार प्रसारित होंगे, समाचार संध्या, और 9:00 News@9 दिल्ली से प्रसारण किया जाएगा। 9:15 पर सुगम संगीत, 9:30 शास्त्रीय संगीत आप सुन पाएंगे।

दोपहर 2:15 बजे दोपहर समाचार आप सुनेंगे। 2:30 बजे पर कृषि जगत कार्यक्रम, जो कि किसान भाई बहनों का कार्यक्रम है, उसमें पर्यावरण और खेती का रिश्ता, साथ में विश्व पर्यावरण दिवस की जानकारी और जलवायु अनुकूलन जैव विविधता संदेश आप सुनेंगे। 3 बजे हिंदी में समाचार और सांध्यकालीन सभा में सबसे पहले आप सुनेंगे युववाणी शाम 5 बजे।

10 बजे फिल्म संगीत और 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर इंग्लिश समाचार आप सुनेंगे।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 6:40 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान का पाठ। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का पाठ। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 6:50 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं खेती में आज।

खेती में आज कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाया ने नीता कोठारी रो राम राम। किसान भाया आज बात करांगा अणी महीना आपाने खेती बाड़ी रा कसा कसा काम करना है। बागवानी रा काम जो किसान भाई कर रहा है वी केलारी फसल महीने रोपित केलारे वास्ते 1.5 मीटर री दूरी पे 50x50 सेंटीमीटर रा खाड़ा बनाई लेना है। हर एक खाड़ा महीने 10 किलोग्राम सड़ी तकी गोबरी खाद, कंपोस्टरी खाद, 10 ग्राम कार्बोफ्यूरोन, 50 ग्राम फॉस्फोरस और खेत रे ऊपर री मिट्टी मिलाई ने गड्ढा ने भर देना है। रोपित केलारे महीने 25 ग्राम नाइट्रोजन पौधों 50 सेंटीमीटर दूरी पे गोलाई में नाक ने मिट्टी में मिलाई ने पछे पानत करनी है। कागजी नींबू में फल फाटवारी समस्या किसान भाई आनी टाइम पे रेवे अंडे निराकरण रे वास्ते पोटेशियम सल्फेट रे 4% रो गोल पानी में मिलाई ने छिड़काव कर लीजो। अंगूर रे बाग में अणी गर्मी रा मौसम रे महीने 1 सप्ताह रे अंतराल पे पानत रो काम करनो है। किसान भाया एंथ्रेक्नोज और सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग री रोकथाम रे वास्ते फाइटालोन रहा पछे 22 टॉक्स रो 0.3% रो छिड़काव करनो है। यानी कि 750 ग्राम 250 लीटर पानी में प्रति एकड़ मई रे पहला सप्ताह में छिड़काव करनो है और 15 दिन रे अंतराल पे यानी 92 अण में छिड़काव कर सका और यो छिड़काव सितंबर महीना तक आपने लगातार करता रहनो है। लीची री बात करा किसान भाया तो लीची रे पौधा में फल मई जून में पाक ने तैयार वे जावे। फल पाक वारे केड़े गहरा गुलाबी और लाल रंग रा वे जावे और लीची रे फलारी तुड़ाई मई ऊ जुलाई तक रे बच्चे आपने कर सका। फला रे फटनो लीची री एक खास समस्या है जो की फल री बढ़तवार रे टेम पे जमीन रे महीने नमीरी कमी रेवा जाऊं वेवे या पछे तेज गरम हवारे चालवारे कारण या समस्या वेवे। जमीन रे महीने नमी बनाए राखने है किसान भाया और अंडे वास्ते देखो फल गिरवा लागे तो मणि लेने पकवा लागे मणि तक बाग में हल्की पाणत करता रहनो है। लारिस देखो फल विगलन रोग रे बचाव रे वास्ते

તે ફલારે પાકવાઉં 20-25 દનારે પહેલા બાવેસ્ટીન રી 10 ગ્રામ માત્રાને 10 લીટર પાણી મેં ગોલને ફલા પે છિડકાવ કર દેણો હે। औषधीय पौधा की बात करा तो देखो मेथा री फसल में महीने 40-50 किलोग्राम नाइट्रोजन री तीसरी और अंतिम ट्रो ड्रेसिंग आपने जरूर कर लेनी है। मेथा फसल री कटाई 100-120 दनारे बच्चे करनी है। जदि की पौधा में कलिया मणवा लागे वधी करनी है और दूजी कटाई पहली कटाई रे 70-80 दिना पे किसान भाया कर लीजो। पौधा री कटाई मिट्टी री सतह 4-5 सेंटीमीटर ऊंचाई पे करनी चाहे किसान भाया और कटाई रे केड़े पौधा ने 2-3 घंटा तक खुली धूप में छोड़ देना चाहे। कटाई रे केड़े कटी तकी फसल ने छाया में हल्को सुखाई ने जल्दी आसवन विधि यंत्र तेल निकाल लेना चाहे। जदिस जो है मेथा रे पौधा हाउ जो है उपज आप ले सकांगा। सर्प गंधा री बात करा किसान भाया तो अंडी नर्सरी मई महीना में आपा नाक सका। प्रति हेक्टेयर खेतरी रोपाई रे वास्ते 6-7 किलोग्राम बीज री जरूरत होगा। तुलसी और सफेद मूसली री बात करा तो अंडी वावणी भी अणी महीना में कर सका जो कि एक फायदेमंद औषधीय फसल है। मई में रोपाई दोपहर रे केड़े करनी चावे, रोपाई रे केड़े तुरंत खेत में पाणत कर देनी चावे। हल्की वर्खा वाला दन में तुलसी और धोली मूसली री रोपाई रे वास्ते बहुत ही उपयुक्त रहे। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल रे वास्ते 750 ग्राम और 1 किलोग्राम तुलसी रा बीज पर्याप्त वेगा। अंडी रोपाई कतारू कतार और पौधों पौधारी दूरी 60x30 सेंटीमीटर री दूरी पे करनी चावे सा। सुगंधी पौधा की बात करा किसान भाया तो रजनीगंधा में 1 सप्ताह रे अंतराल पे पाणत कर देनी है। 2 सप्ताह रे अंतराल पे निराई गुड़ाई करता रहना चाहे जण्यू खेत में खरपतवार नहीं बढ़ेगा और जो फसल रे वास्ते देखो खरपतवार हानिकारक वे वे अणी वास्ते आपाने जो है टेम टेम पे निराई गुड़ाई करता रहना है। और देर ऊँ लगावा वाला जो व्यवसाय है वंडे योग्य पुष्प डंडिया तो मिल जावे लेकिन नवजात कंद कम बने। पहाड़ी इलाका रे महीने कंद रोपण रो उचित टाइम मई ऊँ जून तक रहे। कंद ने पंक्तिया में लगाना ठीक रहे। पंक्तियों पंक्ति री दूरी री बात करा तो 30-40 सेंटीमीटर और पंक्तिया में कंद कंदरी दूरी री बात करा तो 15-20 सेंटीमीटर रखनी चाहे। एक एकड़ रजनीगंधा लगावा रे वास्ते लगभग 50-60 हजार कंदरी जरूरत वेगा। और किसान भाया हाउ पुष्प डंडिया प्राप्त करवा रे वास्ते 3-5 सेंटीमीटर व्यास वाला जो कंद है वी लगाना हाउ रहे। कंद लगाती टेम पे खेत में नमी रहना जरूरी है और कंद कल्ला अंकुरित वेता नजर आवे जनी टेम पे पाणत कर देनी चावे। टेम टेम पे किसान भाया वातावरण रे अनुसार पाणत करतो रहनो है। हाउ पैदावार रे वास्ते खेत में नमी बनाए रखनी भी जरूरी है। गुलाब री बात करा तो गुलाब री फसल में जरूरत रे अनुसार किसान भाया पाणत और निराई गुड़ाई रो काम आपणे कर लेनो है। चाइना एस्टर गेंदा और कॉर्नेशन में शीर्ष नोचन और लीलियम में फूलारी तुड़ाई शुरू कर देनी है। पुष्प वाला पौधा में कीट या रोग रो प्रकोप वे तो 0.2% फफूंदी नाशक कैप्टोन या पचे बावेस्टीन और 0.2% कीटनाशक दवाई रोगार मेटासीटॉक्स अणासबरो गोल मनाई ने 20-25 दिना रे अंतराल पे छिड़काव कर देनो है। ग्लेडियोलस री बात करा किसान भाई तो अंडी खेती रे महीने पाणत लगभग 10-12 दिना रे अंतराल पे करनी है। ध्यान यो देनो है कि जदि कंद जमीन नु निकल रहा है वणी तेम पे आपणे वणा में 2-3 सप्ताह तक पानी रोक देनो है अणी तरह पौधा रो विकास हाउ वेगा। डोफेडिल नरगिस री बात करा तो अण में कंदरा कल्ला अंकुरित वेता नजरे आवे तो पाणत कर देनी चावे। हव उपज लेवारे वास्ते खेत में नमी बनाए रखनी चावे और रोग और कीड़ारो प्रकोप वेरो वे किसान भाया तो 0.2% बावेस्टीन और 0.2% रोगोर या मेटासिकटॉक्स अणासबरो गोल मनाई ने 20-25 दिना रे अंतराल पे आपणे छिड़काव कर देनो है। किसान भाया अबे बात करा वेस्ट डी कंपोजर खेतरे कचरारी जणियों देखो आपा जैविक खाद बनाई सका और या खाद जो है बहुत ही शक्तिशाली वेवे या मिट्टी री उर्वरता ने बढ़ावे। केंचुआ और मित्र जीवाणुओं री संख्या में वृद्धि करे और लारे इस पराली जलावारी जैसी समस्या है वणियों भी मुक्ति दिलावे। और अंडे देखो सामग्री री बात करा तो वेस्ट डी कंपोजर आपने लेनो है गुड़ लेनो है और पानी लेनो है। इन्हें देखो छाया में रखनो है प्लास्टिक या रासायनिक पदार्थ उपयोग नहीं करना है और टेम टेम पे देखो नमी बनाया रखनी है। प्रयोग री विधि री बात करा देखो 200 लीटर पानी रे महीने 2 किलो गुड़ और 1 शीशी वेस्ट डी कंपोजर ने हाउ तरीका मिलाई देनो है। गोल ने 7 दिना रे वास्ते किंडवन रे वास्ते छोड़ देनो है। रोजाना सुबह शाम लकड़ी री छड़ी हिलाता रहनो है।
तैयार गोल रो देखो फसल अवशेष पर।

डाली पे छिड़काव करता रहना है और नमी बनाया रखवा रहे वास्ते टेम टेम पे पानी रो छिड़काव भी करना है। 30-40 दिना ने बाद देखो खाद तैयार भी जाएगा। खाद रे देखो फायदारी बात करा तो या मिट्टी री उर्वरता और जैविक कार्बन बढ़ावे, केचुआ मित्र जीवाणु अणु बढ़े, फसल री पैदावार और गुणवत्ता भी बढ़े, रासायनिक खाद री जरूरत कम वेवे और पराली जलावा जैसा जो प्रदूषण वेवे वणी भी मुक्ति मिल सके और मिट्टी में जल धारण क्षमता भी बढ़े। और देखो पानी और गुड़ और वेस्ट डिकम्पोजर ने आपने मिलाई लेनो है, यो किस तरह काम करे अन्य बतावा हुआ 7 दिन तक अन्य किन्वन रे वास्ते छोड़नो है। फसल अवशेष पराली है अणा पे आपने छिड़काव करना और 30-40 दना में तैयार कालो सोनो जो है शक्तिशाली खाद बन जाएगा। इन्हें देखो कटे कटे उपयोग कर सका तो फसल अवशेष रो पराली धान गेहूं गन्ना अणा सबरा जो अवशेष है वणान फेरा कर देना है। जैविक कचरो जिसरे की पशु गोबर है सूखो पत्ता है अणा सब ने आपने ले लेनो है। रसोई रो कचरो जिसके साग भाजी रा छिलका है ई सब आपने उपयोग कर सका। बगीचा रो कचरो जिसके सूखा पत्ता टहनिया है अणा सब रो उपयोग जो है आप खाद बनावा ने कर सका। अणी तरह किसान भाई खेती बाड़ी रो काम करो का तो बागवानी फसल उत्पादन भी होवेगा। खाद भी देखो रासायनिक खाद रो प्रयोग आपने कम करना पड़ेगा और आपने खेता में और आपने रसोड़ा में मिलवा वालो जो कचरो है वणी आप खाद बनाई ने उपयोग कर सकांगा। अबे देखो माने कार्यक्रम रो टाइम भी गयो तो चाला सा राम राम सा।

अभी आप सुन रहे थे खेती में आज, मीडियम फील 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 7 बज रहे हैं, आइए आप सुनते हैं सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे सुनने वाले सभी श्रोताओं को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो नगमा आपने सुना उसे गाया था लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम है शेरा। सदाबहार नगमे में अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म सफ़र से। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और उसे स्वर दिए हैं मन्ना डे ने।

0: नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
5: के लिए आई एम
6: हियर। दीप, तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
7: दिमाग चार्ज कर अपना।
8: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
7: देखा
6: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
8: अब क्या करोगे?
6: फ्री वाईफाई है ना।
7: बुद्धू सुधर जा।
8: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
6: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
8: RBI कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

मन्ना डे और समूह स्वर में अभी आपने ये नगमा सुना फिल्म तीसरी कसम से। अगला नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म गुड्डी से, जिसे अपनी आवाज़ दी है वाणी जयराम ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अभी जो नगमा आपने सुना वो था बूंद जो बन गए मोती फिल्म से, और इसे गाया था मुकेश ने। अगला नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म काला बाजार से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और एस डी बर्मन का संगीत।

अभी जो नगमा आपने सुना वो था फिल्म शर्मिली से, एस डी बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज़। अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म मधुमती से, मुकेश की आवाज़ और सलील चौधरी का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार नगमे। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। अभी 7:45 होने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं गांधी जी की आत्मकथा पर आधारित कार्यक्रम गांधी दर्शन। वाचन स्वर दिलीप शर्मा।

कांति दर्शन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को दिलीप शर्मा का नमस्कार। कांति दर्शन कार्यक्रम में गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से संस्मरण। आज का संस्मरण पिता की मृत्यु और मेरी नालायकी। उस समय मेरा 16वां वर्ष था। पगंदर की बीमारी से पिताजी के एकदम खाट पकड़ लेने की बात कह चुका हूं। उनकी सेवा में माताजी, घर का एक पुराना नौकर और मैं, ये तीन जने अधिकतर रहते थे। मेरा काम नर्स का था। उनका घाव धोना, उस पर मलहम लगाना, दवा पिलाना और दवा को घर पर तैयार करना मेरा खास काम था। रोज रात को मैं उनके पैर दबाता और अनुज्ञा मिलने पर या उन्हें नींद आ जाने पर मेरा सोने जाना, यह मेरा नियम था। मुझे ये सेवा बहुत ही प्रिय थी। याद नहीं कि किसी दिन मैंने उसमें चूक की हो। ये दिन हाई स्कूल के तो थे ही, अतः खाने पीने के बाद बचा हुआ मेरा समय स्कूल में या पिताजी की सेवा में ही लगता था। उनकी आज्ञा मिलती और उनकी तबीयत ठीक दिखाई देती तो शाम को टहलने जाता था। इसी साल पत्नी गर्भवती हुई। यह मेरे लिए दोहरी लज्जा की बात थी। पिताजी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। वैद्यों ने अपने लेप आजमाए, हकीमों ने मरहम पट्टी, हजाम वगैरह ने घरेलू दवाइयां, अंग्रेज डॉक्टर ने भी अपनी अकल लड़ाई। उसने बतलाया कि नश्तर के सिवा दूसरा इलाज नहीं है। कुटुंब के मित्र वैद्य ने रोका। इस ढलती उम्र में पिताजी के नश्तर लगाना उन्होंने नापसंद किया। अनेक प्रकार की दवाइयों की बोतलें जो मंगाई गई थी व्यर्थ गई और नश्तर न लगा। वैद्य राज होशियार थे, विख्यात थे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने नश्तर लगाने दिया होता तो घाव भरने में अड़चन न होती। नश्तर बंबई के उस समय के एक विख्यात सर्जन लगाने वाले थे, परंतु निकट आ गया था, इसलिए ठीक कदम कैसे उठता। पिताजी बंबई से बिना नश्तर लगवाए और तदर्थ खरीदा हुआ सामान साथ लिए वापस लौटे। उन्होंने अधिक

जीने की आशा छोड़ दी थी। कमजोरी बढ़ती गई और सब काम बिस्तर पर ही होने की नौबत आ गई। पर उन्होंने अंत तक इसका विरोध ही किया और उठने बैठने का कष्ट सहने का आग्रह करते रहे। वैष्णव धर्म का यह कठोर शासन है। वाहन शुद्धि अति आवश्यक है, पर पाश्चात्य वेद के शास्त्र ने हमें सिखाया है कि मल त्याग और स्नान आदि की सारी क्रियाएं बिछोने में पड़े पड़े ही पूरी सफाई से हो सकती है और रोगी को तनिक भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। बिस्तर जब देखो तब साफ ही मिलेगा। इस तरह की सफाई को मैं तो वैष्णव धर्म का नाम ही दूंगा। पर इस समय भी पिताजी का स्नान आदि के लिए बिछोने से उतरने का आग्रह देखकर मैं तो आश्चर्यचकित ही रह जाता और मन ही मन उनकी स्तुति किया करता। अवसान की काल रात्रि निकट आ गई। उस समय मेरे चाचा जी राजकोट में थे। मुझे कुछ ऐसा स्मरण है कि पिताजी की बीमारी बढ़ती जाने के समाचार पाकर वह आए थे। दोनों भाइयों में गाढ़ा प्रेम भाव था। चाचा जी सारे दिन पिताजी की खाट के पास ही बैठे रहते और हम सबको सोने की इजाजत देकर खुद वहीं रह जाते। किसी को यह आशंका तो थी ही नहीं कि यही उनकी आखिरी रात होगी। यूं तो डर हमेशा ही बना रहता था। रात के 10:30 या 11 बजे होंगे, मैं पैर दबा रहा था। चाचा जी ने मुझसे कहा, तू जा, अब मैं बैठूंगा। मैं खुश हुआ और सीधा शयन गृह में पहुंचा। स्त्री बेचारी तो गाढ़ी नींद में थी, पर मैं कब सोने देता। जगाया। 5-7 मिनट गुजरे होंगे कि किवाड़ खटखटाए गए। मैं धक से रह गया, चौंक उठा। नौकर बोला, उठो, बापूजी ज्यादा बीमार है। ज्यादा बीमार तो थे ही, यह मैं जानता था, इसलिए इस ज्यादा बीमार का खास मतलब मैं समझ गया। बिछोने से एकदम कूद पड़ा। ठीक बताओ क्या हुआ? जवाब मिला, पिताजी गुजर गए। अब मेरे पछताने से क्या होता था। मैं बहुत शर्माया, बहुत दुखी हुआ। पिताजी के कमरे में दौड़ा गया। सोचा कि विषांत न होता, पिताजी के अंतिम घड़ी में उनके पैर दबाता होता। अब तो मुझे चाचा जी के मुंह से ही सुनना था कि बापू तो हमें छोड़कर चले गए। अपने बड़े भाई के परम भक्त चाचा ने अंतिम सेवा का सम्मान प्राप्त किया। पिताजी को अपने अवसान का संकेत मिल चुका था। उन्होंने इशारे से लिखने का सामान मांगा। कागज पर ही उन्होंने लिखा, तैयारी की जाए। यह लिखने के बाद अपनी बाह पर बंधा ताबीज तोड़कर फेंक दिया और सोने की कंठी को भी तोड़कर अलग कर दिया। क्षण भर में आत्मा उड़ गई। अपनी जिस शर्म का संकेत मैंने पिछले प्रकरण में किया वह यही है, सेवा के समय भी विषय की इच्छा। इस काले धब्बे को मैं आज तक भी न धो सका, भूल न सका और सदा यह मानता रहा हूं कि यद्यपि माता पिता के प्रति मेरी भक्ति असीम थी, उनके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था, पर सेवा के समय भी मेरा मन विषय को नहीं छोड़ सकता था। यह उस सेवा में अक्षम्य त्रुटि थी। इसी से मैंने अपने को एक पत्नी व्रत का पालक मानते हुए भी विषांत माना है। इससे छूटने में बहुत समय लगा और छूटने के पहले बहुत धर्म संकट भी सहने पड़े। अपनी इस दोहरी शर्म के प्रकरण को पूरा करने के पहले यह भी कह देना चाहता हूं कि पत्नी को जो बच्चा पैदा हुआ वह दुनिया में 2-4 दिन रहकर ही चल बसा। दूसरा परिणाम हो भी क्या सकता था। कांति दर्शन कार्यक्रम के आज के इस अंक में इतना ही। अब इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गांधी दर्शन, गांधी जी की आत्मकथा पर आधारित यह कार्यक्रम। इसका वाचन स्वर था दिलीप शर्मा का।

आइए अब सुनते हैं जलवायु संदेश। हमारी धरती का मौसम और पर्यावरण लगातार बदल रहा है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, जल संकट और प्राकृतिक आपदाएं जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत हैं। ये केवल वैज्ञानिकों का ही नहीं बल्कि हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलवायु संरक्षण के लिए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, जैसे पेड़ लगाना, जल और बिजली की बचत करना, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना तथा सार्वजनिक परिवहन को अपनाना। ऐसे कदम हैं जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायक हैं।

किसानों के लिए मौसम आधारित खेती, वर्षा जल संचयन और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग समय की आवश्यकता बन गई है। वहीं शहरों में हरित क्षेत्रों का विकास और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग भविष्य को सुरक्षित बना सकता है।

जलवायु केवल मौसम का विषय नहीं है, बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य, कृषि और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज विश्व भर में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि, सूखा और न जाने कैसी कैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके प्रमुख कारण वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधनों का अधिक उपयोग, औद्योगिक प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी हमारे पूर्वजों की विरासत नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संतुलन की दिशा में अपना योगदान दें।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेज़ी में मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: शीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी

0: भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय

0: 87 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार।

0: पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे, लगभग 21,800 करोड़ रूपये की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under 18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
4: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the four-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC, modern power distribution.

0: पेड़ों की छाया और नदियों का जल धरती का अनुपम श्रृंगार है। शांत नीला आकाश, शीतल पवन, पर्यावरण ही जीवन का आधार है। वन गाते हैं हरियाली के गीत, पर्वत देते साहस का ज्ञान, नदियाँ सिखाती है चलते रहना, प्रकृति में ही छिपा है जीवन विधान। इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए आगाज करते हैं उदयपुर के दैनिक और आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का। आज के डिजिटल फन फ्राइडे के इस बेहद रोचक अंक में आपके रेडियो सेट पर मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमित श्रीमाली और मेरे साथ हैं
1: ज्योति।
0: तो स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: तो अमित, आज के सेगमेंट में हम क्या क्या खास लाए हैं ये भी श्रोताओं के साथ साझा करते चलें।
0: बिल्कुल, सबसे पहले कार्यक्रम के जो सेगमेंट है उसके अंदर डे स्टार्ट में हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस और उसी के साथ में कुछ स्थानीय खबरों पर भी होगी हमारी नज़र। इसके बाद में स्मार्ट जीवन, उसके अंदर स्मार्ट सिटी और नागरिकों की जिम्मेदारी पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे।
1: और आज है फिल्मी फ्राइडे, तो इस सप्ताह फिल्म जो रिलीज़ हो रही है सिनेमाघरों में या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो सीरीज़ रिलीज़ हो रही हैं उनके बारे में जानकारी देंगे और बातें होंगी उन चुनिंदा फिल्मों की जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। साथ साथ आपके व्हाट्सएप संदेश भेजना ना भूलिएगा, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रियाएँ आज के

0: कार्यक्रम से संबंधित हम ऑन एयर करेंगे और ये प्रोग्राम होगा लिसनर्स कनेक्ट आज सुबह 9:10 से।
1: बिल्कुल, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9462697568। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9462697568। तो हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा और सुनते रहिए आकाशवाणी उदयपुर।
0: करते हैं आगाज इस गीत के साथ।

0: तो ज्योति, कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का आगाज़ हम लोग कर चुके हैं और अब अगर हम बात करें मौसम की, तो आज सवेरे थोड़ा मौसम सुहाना था, थोड़ा खुशनुमा मौसम था। थोड़ी अर्ली मॉर्निंग जब हम ड्यूटी पर आ रहे थे तब थोड़ी तेज़ हवाएं चल रही थी और थोड़ा सा खुशनुमा मौसम बना। लेकिन तापमान की अगर हम बात करें तो कल का तापमान जो रहा है वो 27.2 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है और अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री रहा है। और अगर हम बात करें आने वाले समय की तो तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं, तो आप सभी लोग अपना थोड़ा सेहत का ध्यान रखते हुए ही बाहर निकलें।
1: बिल्कुल, पेड़ों की छांव रहे, नदियों का बहाव रहे, नीला रहे आकाश सदा, धरती का श्रृंगार रहे। सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाओं के साथ अमित हम बता रहे हैं शहरवासियों को लोकल अपडेट्स। तो शहर की बात हो रही है, आसपास की गतिविधियों की बात हो रही है, तो हमारे उदयपुर में विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने को प्राथमिकता दी जा रही है। सज्जनगढ़ आने वाले पर्यटकों को अब प्लास्टिक वाली बॉटल साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश द्वार पर ही कांच की बॉटल उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी जो रीयूजेबल होगी। 50 रुपये जमा कराना होगा प्रति यात्री और भ्रमण के बाद अगर वो बॉटल वापस करते हैं तो 40 रुपीज़ उनको रिटर्न कर दिए जाएंगे, ताकि बॉटल्स इधर उधर उद्यान में ना मिले, प्लास्टिक का उपयोग बंद हो जाए, क्योंकि ये एरिया जैव विविधता और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है। प्लास्टिक का कचरा चुनौती बन रहा है। अगली अपडेट की बात की जाए तो आज क्लीन उदयपुर ग्रीन उदयपुर अभियान के तहत नाइट वॉकेथन है विभिन्न संस्थाओं द्वारा। शाम 7:30 बजे मोती मगरी गेट से फतेह सागर ओवरफ्लो तक 1000 से अधिक महिलाएं में भाग लेकर स्वच्छता और पर्यावरण का संदेश देती नजर आएंगी। सभी प्रतिभागी सेम ड्रेस कोड में होंगी, रजिस्ट्रेशन करवाए जा चुके हैं और ये जो विश्व पर्यावरण दिवस पर सर्वश्रेष्ठ को उनके जो कोटेशन लिखे जाएंगे उस पर उनकी प्रतियोगिता भी है और डेफिनेटली विनर्स को प्राइज भी दिए जाएंगे। साथ साथ अमित, हम अपने श्रोताओं को भी ये पूछना चाहेंगे कि आपके मोहल्ले में, आपके नज़दीक, आपके आसपास भी पर्यावरण से जुड़ी कोई ना कोई गतिविधि ज़रूर हो रही होगी आज के दिन, क्या आप उससे जुड़ रहे हैं, कैसा लगेगा आपको और क्या आपकी इसके बारे में फीलिंग्स हैं, हमें ज़रूर बताइए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9462697568।
0: बिल्कुल, और साथ ही आज जलापूर्ति थोड़ी सी बाधित रहेगी क्योंकि जयसमंद की जो पाइपलाइन है उसमें लीकेज है और उसका रिपेयर और मेंटेनेंस का काम चल रहा है। कुछ जगह जहां पर पानी आज शाम को पहुंचाया जाएगा वो है सेक्टर 14 वीआईपी कॉलोनी, विजय सिंह पथिक नगर, कच्ची बस्ती, आरएचबी कॉलोनी, लुणावतों का

0: फला, जैन साहब की बाड़ी, आरकेपुरम, गोकुल विलेज, अम्बा फला, इन स्थान पर जलापूर्ति बाधित रहेगी और शाम को यहाँ पर पानी छोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही कुछ जगह जहाँ पर पानी शनिवार को ही दे पाएंगे वो है ओल्ड आरटीओ रोड, न्यू मीरानगर, यूआईटी कॉलोनी और चंद्रा कॉलोनी, यहाँ पर आपको शनिवार को ही जलापूर्ति प्राप्त होगी।
1: और साथ साथ अमित, जल संरक्षण से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण पहल के तहत आज से जिले में जल स्वावलंबन पखवाड़ा भी शुरू हो रहा है, जिसका उद्देश्य है जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना।

0: रेडियो लेक सिटी आकाशवाणी उदयपुर पर यह है आपका मन पसंद शो नमस्कार उदयपुर। और अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी की। अमित तो जब भी हम स्मार्ट सिटी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में आता है चौड़ी सड़कें हैं, साफ सुथरा पार्क है, डिजिटल सुविधाएं हैं, आधुनिक परिवहन की तस्वीर उभर आती है। पर क्या तकनीक सुविधाएं शहर को स्मार्ट बनाती हैं? क्या शहर की असली ताकत जो स्मार्ट सिटी है उसकी ताकत स्मार्ट नागरिक भी होते हैं?
1: सही मायने में अगर देखा जाए तो इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी।

0: ये सभी बातें किसी न किसी रूप में एक स्मार्ट सिटी के लिए सहायक ज़रूर हैं, लेकिन हमारा शहर स्मार्ट तभी होगा जब हमारे लोग, हमारे नागरिक, हमारे यहाँ के रहने वाले स्मार्ट होंगे।
1: पर कैसे करें, हम सब अपना कर्तव्य तो निभा ही रहे हैं।
0: बिल्कुल, अगर स्मार्ट नागरिकों की बात की जाए तो कुछ छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण हमारी पहली जिम्मेदारी है। हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, जल और बिजली की बचत करनी है, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है और जहां तक हो सके अपने शहर को स्वच्छ रखना है।
1: और कचरा संग्रहण पात्रों में ही डालना है। आपको ये ध्यान रखना है कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना है और पर्यावरण संरक्षण में जैसे पेड़ लगा दिए तो बस वहीं पे जिम्मेदारी नहीं खत्म होती है, उसका ध्यान भी रखना होता है। अगर इसके लिए आप कह सकते हैं कि हम इतने बड़े पेड़ का या फिर लगाने के बाद उसे भूल जाते हैं पानी देना, अपनी बालकनी में, अपने आंगन में, अपने आसपास जो गमले रखेंगे तो उसमें पानी देना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप बिजली की बचत करते हैं, जैसे कि आपने एसी लगा दिया 16 डिग्री टेम्परेचर पर और उसके बाद आप कंबल ओढ़ करके जाते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि इससे आप बिजली की बचत भी नहीं कर रहे, पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान नहीं दे रहे। तो अपने एसी को भी 25-24 तक भी अगर डालते हैं जितना, तो उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और आप खुद को कंफर्टेबल ही फील कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं।
0: और एसी को कम करके और कंबल ओढ़ना आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो जिम्मेदार नागरिक में अपना स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें, सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों का पालन करें, यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, या फिर थोड़ा सा कहीं ऐसी जगह हम जा रहे हैं हॉस्पिटल या ऐसी जगह जहां बैक्टीरियाज इजीली अपने को कैप्चर कर सकते हैं, तो वहां पे मास्क वगैरह का यूज़ करना है, या छींकते समय एक बहुत सिंपल सी बात है कि हाथ का हम या कोहनी का हम इस्तेमाल करें ताकि हमारे वायरस किसी
1: स्वच्छता बेसिकली अपनी स्वच्छता का भी ध्यान रखें और दूसरों की सेहत से भी खिलवाड़ ना करें। ज़रूर से इसके बारे में जागरूक होना हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर हम ऑनलाइन होते हैं तो भी हमें साइबर फ्रॉड से बचने की जिम्मेदारी, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत सारी अपडेट्स आती है। जब हम फ्रॉड में फंस रहे हैं बाई चांस सडनली, तो उससे बचाव के बहुत सारे उपाय अब वो भी सबकी जानकारी में आ रहे हैं, उनसे लेकर अवेयर रहें। और क्योंकि अमित सिर्फ इमारतें स्मार्ट हों, देखने में सब कुछ अच्छा सा, चमकीला सा, खूबसूरत सा लगे, उसी से नहीं होता, बल्कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों से भी बनती है स्मार्ट सिटी।
0: बिल्कुल। और एक और खास बात जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो है ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें लगता है कि सड़क तो हमारी ही है, हम जैसे चल रहे हैं सही ही चल रहे हैं, लेकिन वहां पे सामने वाले यात्रियों की, सामने वाले जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है और ये एक स्मार्ट नागरिक की पहल होनी चाहिए।
1: तो अमित, हम श्रोताओं से पूछते हैं कि आप बताइए, आपके अनुसार स्मार्ट सिटी बनाने में नागरिकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? क्या पानी और बिजली की बचत के लिए आपको आदत अपनाते हैं, या अपने शहर की कौन सी एक सुविधा जोड़ना चाहेंगे जिससे कि हमारा शहर और स्मार्ट बने? तो अपने जवाब हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568। आपके जवाब हम शामिल करेंगे प्रोग्राम लिसनर्स कनेक्ट में, जो आज ही के नमस्कार उदयपुर का सेकेंड पार्ट होगा।
0: बिल्कुल, और नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9462697568।

0: खूबसूरत से शहर रेडियो लेक सिटी आकाशवाणी उदयपुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर पर ये प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर अपने शहर का मनपसंद शो। तो अब सुनाएंगे हम श्रोताओं को फिल्मी फ्राइडे में आज रिलीज़ होने वाली फिल्मों के बारे में, लेकिन उससे पहले लास्ट वीक का रिपोर्ट कार्ड भी जान लेते हैं। अमित, पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई फिल्मों का हाल कुछ मिला जुला सा रहा, कुछ फिल्में दर्शकों को पसंद आई और कुछ उम्मीद के मुताबिक बड़ी सफलता नहीं हासिल कर सकी। सबसे ज़्यादा चर्चा में रही आयुष्मान खुराना की कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो, दर्शकों ने इसे हल्के फुल्के मनोरंजन को इसके पसंद किया। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 60 करोड़ रुपए का कारोबार किया। रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल अपने संगीत और प्रचार के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ सकी। ट्रेड विश्लेषक कहते हैं कि इस समय दर्शक मजबूत कहानी और नए कंटेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए सिर्फ बड़े नाम ही सफलता के गारंटी नहीं हैं। और अगर पूरे मनोरंजन जगत की बात करें तो रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 द रिवेंज अभी भी चर्चा में है। फिल्म का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक रहा और अब इसके OTT प्रीमियर का इंतजार किया जा रहा है और वो शायद आज ही होने जा रहा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस सप्ताह रिलीज हो रही फिल्में दिल जीत पाती हैं या नहीं। अमित,
1: बिल्कुल, अगर इस सप्ताह रिलीज होने वाली मूवीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मूवी आ रही है बॉबी देओल की, जिसका निर्देशन किया है अनुराग कश्यप ने। मूवी का नाम है बंदर। ये जिंदगी, न्याय व्यवस्था और जो एक कलाकार है उसकी ज़िंदगी के बीच के संघर्ष को बड़े ही गंभीर और संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करेगी। अगली मूवी जो है वो है जवानी तो इश्क होना है। इस फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया है। वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हमें नज़र आएंगे। हल्की फुल्की कॉमेडी, पारिवारिक मनोरंजन, रोमांस, इन सब के साथ इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। साउथ सिनेमा काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है और अभी पैदी नाम की एक मूवी आ रही है।

0: यह जो 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित एक कहानी है जिसमें युवा खिलाड़ी के संघर्ष और सपनों की सफलता के बारे में बताया है। इस फिल्म में शिवा राजकुमार और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। और हॉलीवुड मूवीज़ की बात करें तो आज ही रिलीज़ हो रही है ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स। जी हाँ, जो लोग बचपन में ही मैन कार्टून देखते थे उनके लिए ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन है। और ये बहुत ही खूबसूरत थोड़ी सी फैंटेसी मूवी है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए।
1: तो दैवर, इस वीकेंड आप क्या देखना पसंद करेंगे, सिनेमाघर में फिल्म या फिर ओटीपी पर सीरीज़? हमें व्हाट्सएप कीजिए, बताइए आपका वीकेंड वॉच लिस्ट क्या है। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर फिर से रिमाइंड करा दें, 9462697568।
0: बिल्कुल, नंबर एक बार फिर से लिख लीजिए, 9462697568। और आज रिलीज़ हुई मूवी का ही एक गाना हम आपको सुनवाते हैं जो है बंदर फिल्म से।
2: सुर में गाना सीखिए पादानी सा ऐप के साथ, AI powered personal music teacher from सारेगामा।

तो अभी नमस्कार, उदयपुर में और भी कई सारी बातें हैं बात करने के लिए, लेकिन समाचारों का वक्त हो रहा है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जयपुर अजमेर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार, और 9:10 से नमस्कार उदयपुर।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस आज, प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ये दिवस वर्ष 1973 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत से प्रेरित होकर हम सभी मिशन लाइफ की भावना से काम करते रहेंगे, साथ ही हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी से प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन, वृक्षारोपण और पर्यावरण संतुलन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया है। इस अवसर पर प्रदेश में आज से हरियालो राजस्थान 2026 अभियान शुरू होगा। राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर करेंगे। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत होगी। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के दौरान इस मानसून सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पर्यावरण दिवस पर समारोह रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। प्रदेश में गंगा दशमी से शुरू हुए 15 दिन के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भी आज समापन हो रहा है। अभियान के तहत आज जिला स्तरीय समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी

0: जन भागीदारी से जल संरक्षण से जुड़े कई कार्य किए गए।
1: जिले भर में अभियान के दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी की कई प्रेरक सफलताएं सामने आई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की सफाई, जल संग्रहण संरचनाओं के पुनर्जीवन और पौधरोपण गतिविधियों ने लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज समापन अवसर पर जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन, तुलसी पौध वितरण, हरियाणा राजस्थान अभियान की तैयारियां तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने विश्व भर के खिलाड़ियों से चैंपियनशिप के बाद भी लोगों को योग के प्रति जागरूक करते रहने का आग्रह किया।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: 8 जून तक चलने वाली इस योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। गौरतलब है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को अलग अलग श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये सम्मान प्रदान किए। योजना के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में आयोजित इस समारोह में राजस्थान को मई महीने के दौरान रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के सर्वाधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन और वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में 2रा पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार 90 लाख से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं वाले राज्यों की श्रेणी में दिया गया। इसी तरह सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन वाले 10 जिलों की श्रेणी में जयपुर को 7वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। ऊर्जा सचिव और राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिली है। वे कल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत, सुरक्षित और व्यापक बनाने के लिए उनकी सरकार बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सड़कों का निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जालौर झालावाड़, श्रीगंगानगर कोटपुतली, अजमेर बांसवाड़ा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के संबंध में चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाकर उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। मीडिया से बातचीत में श्री डांगी ने कहा कि वे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। श्री डांगी ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्र और राज्य नेतृत्व का आभार जताया। दूसरी ओर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने कल रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। गौरतलब है कि इन 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में एक नए परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने से कल राजधानी जयपुर सहित 7 शहरों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाएं भी चलीं।

0: सवाईमाधोपुर में रात से ही रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहा। भीलवाड़ा में कभी रिमझिम और कभी तेज बरसात का दौर जारी रहा। जिले के गुलाबपुरा, आसींद, शाहपुरा, जहाजपुरा और मांडलगढ़ सहित भीलवाड़ा में हुई बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों का कहना है कि कपास की फसल में ये बारिश फायदेमंद साबित होगी। पाली में अल सुबह तेज अंधड़ से पेड़ और होल्डिंग्स गिर गए। भरतपुर में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई। कोटपुतली, बहरोड के नारायणपुर, विराटनगर और पावटा सहित विभिन्न स्थानों पर कल रात बारिश हुई। इससे कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आंधी और बरसात के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की आशंका जताई है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरलम पहुंच गया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 28 जून तक मॉनसून दस्तक दे सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस आज। प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले। और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। और जैसा कि हमने कहा था कि हम श्रोताओं से जो संदेश हमें प्राप्त होंगे वो हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो हमें एक मैसेज मिला है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाने जा रहे हैं, प्लास्टिक का उपयोग हमें नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, इससे ताज़ा हवा मिलेगी। और मिनी माइक्रो आर्टिस्ट ये कह रहे हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तोड़ा जी ने हमें मैसेज किया है। साथ ही हम सुनते हैं आज झील हितेशी नागरिक मंच के संस्थापक हाजी सरदार मोहम्मद से हुई बातचीत का अंश।
2: उदयपुर की झीलों को स्वच्छ और जीवंत बनाए रखने के लिए पिछले 2 दशकों से निरंतर संघर्ष कर रहे पर्यावरण प्रेमी हाजी सरदार मोहम्मद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वर्ष 2005 में उन्होंने अपने साथियों के साथ झील हितेशी नागरिक मंच की स्थापना करी और तब से हर सप्ताह श्रमदान के माध्यम से झीलों से कचरा और जलकुंभी हटाने का कार्य कर रहे हैं। 79 वर्ष से अधिक आयु में भी उनका उत्साह युवाओं को प्रेरित करता है। उनका मानना है कि झीलों का संरक्षण केवल प्रशासन की ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। झील संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आपकी रुचि कैसे विकसित हुई और इस दिशा में काम करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली सर?
3: मेरा मकान झील के किनारे पर है और मैंने देखा कई लंबे समय से पिछले झील मैंने खाली देखी है, मैदान देखा है मैदान। और 2005 और 6 में रिकॉर्ड तो बारिश हुई, उस दौरान जलकुंभी ने भी अपने पेड़ पसारे। मैंने हमारे एक जमुना सिंह जो दशरथ थे, हमने दोनों ने प्लान बनाया कि भाई इसको कैसे हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई एक झील हितेशी नागरिक मंच का गठन किया जाए और तब से ये हमने मंच बनाया और 24 अगस्त 2005 से हमने इस काम को अंजाम दिया। ये हम आज तक इसको करते आ रहे हैं और लगातार हमारे मेंबर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दूर तक के नए आते हैं, पुराने जाते रहते हैं और इस काम को हम बराबर से अंजाम दे रहे हैं।
2: तो आपके अनुसार झीलों के सामने अभी वर्तमान समय में ऐसी कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिनकी वजह से झील खराब हो रही है, इनके क्या कारण आपको नजर आते हैं सर?
3: सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है लोगों की जागरूकता की कमी, बहुत बड़ा कारण ये है। हम हर संडे रमजान के दौरान माइक से लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई इस पानी को हम पीते हैं, इससे पूजा करते हैं, इससे स्नान करते हैं, मेहरबानी करके इस पानी में गंदगी मत डालो, इसको साफ रखो।
2: जो अभी शहरीकरण बढ़ रहा है या प्रदूषण जो बढ़ रहा है, इससे जो झीलों का पारिस्थितिक तंत्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इससे निपटने के लिए हमें क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
3: शहरीकरण के साथ साथ प्रशासन को विनाश का भी ध्यान देना होगा। विकास तो हो रहा है, अच्छी बात है
2: जी,
3: पर साथ में हमें विकास पर भी ध्यान देना होगा। जंगल काटे जा रहे हैं,

0: पानी में लोग गंदगी डाल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हमारा ये कहना है कि लोग जागरूक हो और चीजों को साफ रखें, और प्रशासन में हमारा यही कहना है कि विकास करो आप, लेकिन विनाश का भी ध्यान रखना होगा, विनाश का भी ध्यान रखना होगा।
1: जिलों के संरक्षण में जो स्थानीय कम्युनिटी या जो आम नागरिक हैं, ये किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा पाएंगे?
0: आम नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात एक ही है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर जागरूक होंगे तो ऑटोमेटिक ये सब भी सही हो जाएगा। मेरा ये कहना है साहब इस बारे में कि जल, वायु और जंगल, इस पर किसी तरह का दखल नहीं होना चाहिए। इंसान अगर इन तीनों चीजों पर दखल छोड़ देगा तो ऑटोमेटिक जंगल पनपेंगे, पानी साफ होगा, वायु भी प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। इन तीनों पे अमल करना बहुत जरूरी होगा।
1: तो आप पिछले लगभग 20-21 सालों से जो ये अलख जगाए हुए हैं और जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो इन कामों के आपको कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं या हर जगह पे आपको नकारात्मकता ही नजर आती है?
0: नहीं, मिले हैं साहब, कई बार हमने देखा मिले हैं। श्रमदान के दौरान हम जब नवाब में झील में श्रमदान करते वक्त लोग जो पुल से कचरा डालते, उस वक्त हमने सुना है लोग कहते हैं कि भाई मत डालो कचरा, बेचारे रात दिन ये काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं, आप मेहरबानी करके झील में कचरा मत, झीलों में कचरा नहीं डालना चाहिए।
1: तो अभी जो हमारे आसपास रहने वाले नागरिक हैं, वो अपने जीवन में ऐसी क्या छोटे छोटे बदलाव करें या ऐसी क्या चीजें करें जिससे जल स्रोतों को संरक्षण किया जा सके या उनको और अच्छे से हम सुरक्षित रख पाएं, इसके लिए क्या बदलाव की आवश्यकता है आपको लगती है?
0: इसमें तो बस मेरा ये कहना है कि लोग जागरूक हो इस बारे में और हर चीज में दखल अंदाजी छोड़ दें, बस यही मेरा इसमें कहना है।
1: और हमारे श्रोताओं को पर्यावरण और जल संरक्षण से जोड़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बस एक ही संदेश है मेरा कि भाई सभी को जागरूक होना होगा, झीलें साफ होगी, जल साफ होगा, जंगल सही होंगे, यही संदेश है मेरा।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमसे बात करने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे झील हितेशी नागरिक मंच के संस्थापक हाजी सरदार मोहम्मद से हुई बातचीत।
3: नमस्कार, उदयपुर आप सुन रहे हैं अमित, और इमेजिन कीजिए सुबह की ताज़ी हवा, पक्षियों का मधुर कलरव है, पेड़ों की हरियाली है, धरती की सुंदरता है, और यही सब है हमारा पर्यावरण जो हर पल हमें जीवन देता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि यदि ये हरियाली ना हो, नदियाँ प्रदूषित हो जाएं या फिर स्वच्छ हवा दुर्लभ हो जाए तो जीवन कैसा होगा? इन्हीं प्रश्नों के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। इसके इतिहास और महत्व के बारे में जानें तो 1972 में जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया, तो इसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उन्होंने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस तरह 1973 में पहली बार मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। तब से ये दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जन जागरूकता अभियान बन चुका है। पर्यावरण केवल पेड़ पौधों तक सीमित नहीं है, इसमें वायु, जल, भूमि, वन्य जीव और मानव जीवन से जुड़ी सारी प्राकृतिक व्यवस्थाएं शामिल हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है, सुरक्षित जल हमारी आवश्यकता है, हरियाली हमारी जिम्मेदारी है और पृथ्वी हमारा साझा घर है।
2: बिल्कुल सही बात कही ज्योति आपने। और जैसे जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं या तकनीकी विकास हो रहा है, वैसे वैसे हम पर्यावरण को प्रदूषित करने के नए नए तरीके ईजाद करते जा रहे हैं। उसमें से एक तरीका है ध्वनि प्रदूषण। हम इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से पर्यावरण को क्या ही नुकसान पहुंचेगा, लेकिन आप सोचिए कि कल कारखानों की आवाज़ें, गाड़ियों की आवाज़ें, लाउड स्पीकर्स, शोर, ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास का इकोसिस्टम है या वहाँ रहने वाले छोटे जीव जंतु, चिड़िया, कीड़े मकोड़े जो हैं, उनके इकोसिस्टम पर कितना बुरा प्रभाव डालते हैं। और उसकी वजह से हमारी जो पूरा सर्कल है, जो ज़मीन का सर्कल, मिट्टी का सर्कल या फिर हवा पानी, उन चीज़ों की जो बात होती है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। ठीक,
3: बिल्कुल बिल्कुल। एक जगह इंटरप्ट करना चाहूँगी, क्योंकि 70% जो हमारी फसल होती है, मधुमक्खी या इसी टाइप के परागण होते हैं, पराग कीट जो होते हैं, उन्हीं की वजह से फसलें आती है जिनसे हम अपना भोजन पाते हैं।
2: जी बिल्कुल। और इसी तरीके से एक और प्रदूषण है, वो है प्रकाश का प्रदूषण। क्योंकि अभी लेटेस्ट एक रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा रोशनी वाले कुछ शहर हमारे भारत के ही हैं जो कि रात को जगमग चमकते रहते हैं। अब कुछ ऐसे कीट पतंगे हैं जो चांद को देखकर या तारों को देखकर अपनी दिशा निर्धारित करते थे, अब इन लाइट्स की वजह से, जो आर्टिफिशियल लाइट्स है उसकी वजह से, वो अपनी मंजिलों तक नहीं पहुँच पाते और वो जो लैम्प पोस्ट हैं या फिर जो सड़क के किनारे की लाइट्स है या जो शॉपिंग मॉल के बाहर की लाइट्स है,

0: वहीं पर मंडराते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं।
1: बिल्कुल, पर्यावरण को लेकर हमारी जवाबदेही कितनी गहरी होती है हमें समझना चाहिए। अब हम अलनीनो की भी अगर बात करें तो जैसे क्योंकि आजकल हम एक कितनी एक्सट्रीम गर्मी हम महसूस कर रहे हैं, हमारे उदयपुर की ही नहीं पूरी दुनिया में जो हाल देखा जा रहा है, अब तक का रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है और इसका टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है हम समझ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह हम हैं ये क्यों नहीं समझते। सिर्फ एक अलनीनो की अगर बात करें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनमें एक अलनीनो की बात करें तो ये एक तरह से कह सकते हैं इंटरनेशनल विलन है, क्योंकि जब प्रशांत महासागर का पानी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो पूरी दुनिया का मौसम बिगड़ जाता है, और ऊपर से साथ में अगर ग्लोबल वार्मिंग भी मिल जाती है, यानी कि कहें कि करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति आ जाती है, और ऐसी स्थिति में टेम्परेचर हो जाता है 42-45 डिग्री तक, और ये नॉर्मली मतलब पहले ये लगता था एक्सट्रीम कहीं पर है, पर अब ये हर जगह होने लगा है। तो इस ज़रूरी है कि हम सब इस पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन को ही लेकर के ना माने, बल्कि इसके लिए जागरूक रहें कि हम अपने स्तर पर छोटे छोटे प्रयास करते रहें। किस तरह से करेंगे इसके बारे में बहुत सारी बातें आती हैं।
0: बिल्कुल, अलनीनो से मुझे एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ही अलनीनो इफेक्ट आता है तो भारत पर इसके ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, हमारी जो इकोनॉमी का एक मैक्सिमम पार्ट हम एग्रीकल्चर बिजनेस या एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पर सूखा पड़ेगा या पानी की कमी होगी तो फसलें नहीं होगी, और खेती से जुड़े हुए जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर भी रोजगार का संकट मंडराने लगता है। तो पर्यावरण का जो इफेक्ट है वो पॉलिटिकल भी है, वो अपने इकोसिस्टम पर इकोनॉमिकल भी है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको इन चीज़ों को समझना चाहिए।
1: बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या जुगाड़ लगाते हैं आप गर्मी को बीट करने के लिए, या फिर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपना छोटा सा दायित्व तो किस तरह निभा रहे हैं, हमें व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9462697568। याद रखिए कि हम सबका प्रयास पृथ्वी को एक खूबसूरत ग्रह बनाता है।

0: लिसनर्स कनेक्ट हमारा सेगमेंट भी है। तो आज अमित, अब हम पढ़ते हैं श्रोताओं के संदेश। उनमें से ये लिख रहे हैं हमें विक्रम, पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बल्कि हम सभी के लिए बहुत ही संरक्षक के रूप में काम करने का दिन है कि हमें ध्यान रखना होगा। और ये हैं अब देवर्ष खत्री, 9 साल के हैं, जयश्री कॉलोनी के हमारे श्रोता, और लिखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक थी।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ में एक टॉपिक जो कहीं ना कहीं अछूता रह गया है उस पर बात करते हैं। और वो टॉपिक है कि फिल्मों से हमें जानकारी तो मिलती ही है, लेकिन फिल्में कहीं ना कहीं हमें जागरूक भी करती हैं। आज पर्यावरण दिवस है तो हम ऐसी फिल्मों के ऊपर बात करेंगे जो पर्यावरण या पर्यावरण के आसपास के विषयों पर जो मूवीज़ बनी थी और जिन्होंने हमें ये बताया कि ये रेड लाइट जोन है, बस यहाँ रुक जाना चाहिए हमें, इससे ज़्यादा हमें बर्बादी नहीं फैलानी चाहिए। कुछ एनिमेशन मूवीज़ की बात करें तो काफ़ी सुंदर मूवीज़ एनिमेशन फील्ड में तो है ही, जो बच्चों को टाइम टाइम पर ये दिखाती है कि किस तरीके से आपको पर्यावरण को बचाना है। लेकिन अगर थोड़ी सी अच्छी फिल्म और बड़ी फिल्म की बात करें तो शेरनी एक मूवी आई थी, 2021 में रिलीज़ हुई थी। विद्या बालन इस फिल्म में मुख्य किरदार में थी और इसकी पटकथा लिखी थी आस्था टीकू ने, अमित मसूरकर ने इसको निर्देशित किया था। बहुत ही खूबसूरत और वन्य जीवों के संरक्षण के ऊपर ये मूवी थी। उसके बाद में मूवी 2017 में आई थी कड़वी हवा, जो कि जलवायु परिवर्तन और सूखे की मार झेल रहे किसानों की कहानी, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, इसकी कहानी लिखी थी नितिन दीक्षित ने और माधव पांडा ने इसे निर्देशित किया था। इरादा एक और फिल्म अनुष्का राजन ने लिखी, अपर्णा सिंह ने इसे निर्देशित किया और जल प्रदूषण के ऊपर ये मूवी थी। अब मूवीज़ के मैं नाम ले लेता हूँ, एक मूवी है जल जो पानी के ऊपर है और कौन कितने पानी में, ये मूवी जल प्रबंधन की योजनाओं के ऊपर इस मूवी को बताया था। और एक महत्वपूर्ण फिल्म है केदारनाथ, जो कि पहाड़ों में हो रही मानव दखलंदाजी और जो हम तोड़फोड़ कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके डिसएडवांटेज और उसकी बुरी बातों पर, उसके इफ़ेक्ट्स पर ये मूवी बनाई गई थी।
0: जी, आपने फिल्मों की बात की है तो मैं श्रोताओं से भी एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर आपको पर्यावरण संरक्षण पर एक फिल्म बनाने का मौका मिले तो आप उसका नाम क्या रखेंगे। चलिए कुछ और रेट्रो एरा की फिल्मों की बात करें तो दो बीघा जमीन जो 1953 में आई थी उसे कौन भूल सकता है, जिसमें एक किसान अपनी भूमि को बचाने के लिए, जिसे उद्योगपति खरीदना चाहता है, कारखाना बनाना चाहता है, उससे बचाने के लिए जो संघर्ष करता है वो दिखाया गया है। 62 की फिल्म हरियाली और रास्ता, जिसमें प्रकृति का जो खूबसूरती है, सौंदर्य है उसमें, और शहर की अराजकता के बीच का जो संघर्ष वो दर्शाया गया है। मदर इंडिया फिल्म बताती है कि मौसम का पैटर्न मानवता पर, हम कितने उस पर निर्भर हैं, क्योंकि अगर एक प्राकृतिक आपदा आती है तो ग्रामीण, जैसे कहें कि कृषक समुदाय है, वो परिवार है, उनकी आजीविका कितनी बदल जाती है कोई प्राकृतिक आपदा आने पर। तो इस तरह बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो हमें प्राकृतिक समस्याओं के बारे में अवेयर करती हैं। पर कुछ श्रोता ये भी कहते हैं कि अगर इन्हीं समस्याओं को दर्शाते हुए साथ साथ समाधान भी प्रस्तुत किए जाएं, फिल्मों में ही अगर इस तरह से समाधान दिए जाएं, क्योंकि फिल्में एक बहुत बड़ा जरिया होती हैं, तो ये श्रोताओं को और भी रोचक लगेगा और वो भी इसके लिए प्रेरित होंगे।
1: बिल्कुल, हमें एक और संदेश प्राप्त हुआ है और इनका कहना है कि हम कपड़े, बाइक, केक और ऐसी तमाम चीज़ों पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसा अगर हम नर्सरी पर जाकर पेड़ पौधों पर भी खर्च करें और अपने घर के आसपास या अपने छत पर टेरिस गार्डन में इसे लगा दें तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को थोड़ा बहुत पर्यावरण सुरक्षित दे पाएंगे। ये कहना है सुशील यादव और रेणु यादव का, सेक्टर 4 हिरणमंगरी से।
0: किरण कुमावत है हमारी रेगुलर लिसनर, लिखती हैं कि प्रोग्राम उन्हें बहुत अच्छा लगता है और ये उनकी डेली रूटीन में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम भी यही चाहते हैं कि आपका हमारा प्यार ऐसा ही बना रहे। और ये लिखती हैं कि हमारे इसमें आप जो सिटी अपडेट देते हैं वो भी उन्हें अच्छी लगती है और जो पर्यावरण दिवस पर आज जानकारी दी गई वो भी उन्हें अच्छी लगी कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए।

0: ये बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। तो और भी हमारे श्रोता हैं जिन्हें कमल सुहालका का भी संदेश आया है और जिन्हें ये सारा प्रोग्राम अच्छा लगा है, नाम शामिल कर लेते हैं। नरोत्तम जी गौड़, कमल कुमार सुहालका और विष्णु कुमार सुहालका हैं, आप सभी का हम शुक्रिया करते हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने संदेश भेजने के लिए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपने संदेश भेजा है, शुक्रिया करते हैं।
1: और इसी के साथ घड़ी की तरफ देखें तो आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। दीजिए इजाज़त मुझे यानी कि अमित को और
0: ज्योति को।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। अभी 9:31 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो

0: स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
1: जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है।
0: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
1: जी,
0: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं। यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
1: जी,
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
1: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
1: क्या बात है।
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं,

0: ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
0: क्या बात है।
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
0: क्या बात है। श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
1: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
0: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। अच्छे से शासन करेंगे।
4: खास ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार

0: दरबार में बुलाया है।
1: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए,
0: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर,
1: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
0: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
2: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
0: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
3: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
4: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
0: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
4: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
5: जी महाराज, बहुत धन्यवाद।
6: महाराज की जय हो।
7: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
0: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
4: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
0: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
1: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
0: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
1: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
0: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
1: धन्यवाद महाराज।
4: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
1: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
3: हुआ? मेरे साथ मिला, मुझे भी कैसे हो सकता है
1: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली, तुम
3: कैसे
1: हो
3: सकता है?
1: नकली कैसे आ गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
8: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय।
0: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
1: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें महाराज।
0: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
1: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
0: क्या? और कोई शंका?
1: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
0: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
8: महाराज की जय। महाराज की।

0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
3: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलूं।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए

0: सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
1: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
0: पोंगल।
2: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के चार दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार

0: पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

आकाशवाणी उदयपुर के मीडियम वेव चैनल पर फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमित, और आइए फिल्मी गानों का ये सफ़र शुरू करते हैं।

अभी जो नगमा आपने सुना वो था फिल्म रावण से रेखा भारद्वाज, जावेद अली और अनुराधा श्रीराम की आवाज़ के साथ, और इसे कंपोज किया था A.R. रहमान ने। अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म वीर से राहत फ़तेह अली खान और सुजैन डीमेलो की आवाज़, और कंपोज किया है साजिद वाजिद ने।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन,
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
7: रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
8: RBI कहता है
9: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

अभी आप सुन रहे थे दृश्यम का दूसरा पार्ट मूवी से ये गाना। देवी श्री प्रसाद ने इस गाने को कंपोज किया है और जुबिन नोटियाल ने इस गाने को गाया है। अगला गाना जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है अरिजीत सिंह और शवीरा पारुलकर की आवाज़ में, जिसे कंपोज किया है शंकर एहसान लॉय ने, और मूवी का नाम है सितारे ज़मीन पर।

अभी जो नगमा आप सुन रहे थे वो था छिछोरे फिल्म से। इसे गाया था तुषार जोशी ने और संगीत दिया है प्रीतम ने। अगला नगमा अरिजीत सिंह की आवाज़ के साथ फिल्म एनिमल से, श्रेयांश की संगीत के साथ।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें,
2: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

अभी जो नगमा आपने सुना वो था फिल्म सन ऑफ सरदार 2 से, जिसे गाया था मिक्का सिंह और यो यो हनी सिंह ने साथ में। इस अगला जो गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म ताल से, ए आर रहमान का संगीत है, सोनू निगम और अनुराधा श्रीराम की आवाज़।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

अभी जो नगमा आप सुन रहे थे वो था फिल्म भाग मिल्खा भाग से श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाज़ों में। अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म रांझणा से, जावेद अली की आवाज़ और एआर रहमान का संगीत, और इसे लिखा है इरशाद कामिल ने। और इसी नगमे के साथ अपने रेडियो दोस्त अमित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम गोखड़ा।

0: subscribe and press correct bell icon for the latest updates.
1: देखो सा कार्यक्रम गोखड़ा चली रहो है और अणी गीत रे लारे गोखड़ा कार्यक्रम रे शुरुआत मां करी दीदी। हाँ, और अब कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और एक और मन भावन सुहावनो राजस्थानी लोकगीत आप रे रेडियो सेट ऊपर पहुंचावा।

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
4: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना।
1: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

देखो सा कार्यक्रम गोखड़ा चली रो है और अणी गोखड़ा कार्यक्रम रे माइने आप रे रेडियो सेट ऊपर मा पहुंचाई रिया हां अच्छा अच्छा मन भावन राजस्थानी लोक गीत। तो अबे यो आगलो गीत आप रे रेडियो सेट ऊपर पहुंचावा हुनो सा और कार्यक्रम रो आनंद लो सा।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम गोखड़ा। मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

अनुराधा पौड़वाल की आवाज में सुगम संगीत का आगाज हमने किया और आपकी रेडियो सेट पर पहुंचाई यह कार्यक्रम की पहली पेशकश। आइए सुनते हैं अगली गजल। दिलकश आवाज है पंकज उदास की।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख तेरी समझदारी का फल।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
3: तीनों कॉलेज में
4: डोंट वरी,
3: फीस तो देखो।
5: क्या हाल है, क्या हुआ?
4: फीस की टेंशन,
5: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
6: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
5: वो कहाँ है?
6: मिठाई।
7: RBI कहता है
8: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत का और एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मेहंदी हसन की

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब कार्यक्रम सुगम संगीत की ये आखिरी पेशकश हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं फिल्म संगीत के जरिए फिल्मी नगमे।

चंदन दास की आवाज में कार्यक्रम सुगम संगीत की ये आखिरी पेशकश आपने अभी अपने रेडियो सेट पर सुनी और इसी के साथ सुगम संगीत के इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं।

लव स्टोरी फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ फिल्म संगीत का आगाज हम कर चुके हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र के साथ। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं फिर से एक बार लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म नसीब से।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और कार्यक्रम का अगला गीत अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिर से हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं, बागी फिल्म से।

0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम का शेष भाग लेकर हम फिर से हाजिर होंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

जयपुर केंद्र से किया जा रहा है। तो कार्यक्रम की फिर से एक बार शुरुआत करते हैं, इस बार दिलकश आवाजें बाबुल सुप्रियो और महालक्ष्मी की। फिल्म का नाम चेहरा। इस फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट पर हम पहुंचा रहे हैं। एंजॉय कीजिए इस सेगमेंट के इस गीत को।

0: का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: आरबीआई कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश अजब प्रेम की गजब कहानी से। आतिफ असलम की आवाज में ये गीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है। एंजॉय कीजिए इस सेगमेंट के इस नगमे को।

चांदनी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, दिलकश आवाज थी सुरेश वाडकर और नितिन मुकेश की। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं। सचिन जिगर, अल्तमश फरीदी और शाबाद फरीदी की आवाज़ में जरा हटके जरा बचके फिल्म से। और इससे पहले जो गीत हमने आपके रेडियो सेट पर पहुँचाया वो था विनोद राठौड़ और श्रेया घोषाल की आवाज़ में मुन्ना भाई MBBS से। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश जरा हटके जरा बचके से। और इस गीत के साथ ही दीजिए इजाजत आपकी रेडियो दोस्त स्वाति को इस वादे के साथ कि फिर से बहुत जल्द मुलाकात होगी। फिल्म संगीत का अगला भाग हम लेकर आएंगे 1:45 पर फिर से। अभी एंजॉय कीजिए इस सेगमेंट के इस नगमे को।

और इस गीत के साथ फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रकृति का संतुलन को बनाए रखना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने ये बात कही। श्री शर्मा ने कहा कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और ये हम सभी का दायित्व है कि हम भी उसे बदले में कुछ दें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया।
1: प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रकृति सब कुछ हमें देती है। जो आपकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति हमारी ये प्रकृति करती है। सब कुछ हमें देती है, इसको कुछ हम भी देना तो सीखें। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। चाहिए कि आज से मैं संकल्प लेता हूं कि इसके क्षेत्र में मैं ये काम करूंगा, या मेरे खुद के व्यवहार में चेंज लाते हुए मैं पानी की बिजली की बचत भी करूंगा और पर्यावरण में मेरा सहयोग करूंगा।
0: मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य को कई सौगात दी। उन्होंने अलवर और भिवाड़ी में अर्ली

वार्निंग सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से इन औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता पता लगाया जा सकेगा। इस दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल और CSIR सीरी पिलानी के बीच एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए MOU किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासन में इको फ्रेंडली तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने चार औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए ग्रीन को रेटिंग पुरस्कार दिए गए। श्री शर्मा ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चार नए क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास किया। ये कार्यालय जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा और झुंझुनू में बनाए जाएंगे। उन्होंने 7 वन पौधशालाओं का भी लोकार्पण किया। साथ ही वन्य जीवों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए 8 प्री बेस एनक्लोजर का लोकार्पण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर शुरुआत की। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तीसरे चरण की भी शुरुआत हुई। गंगा दशमी से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आज ही संपन्न हो रहा है। अभियान के तहत सभी जिलों में समारोह रखे गए हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को जल गौरव सम्मान दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा की खारी का लांबा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री गांव में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह गांव का भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री का 0.5% पर ही है। बैंक ने चालू

0: 5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा का जयपुर में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने इसे सहकारी परिवहन पहल को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि जयपुर के नागरिक अब भारत टैक्सी की बाइक, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जयपुर में लगभग 13,000 टैक्सी चालक इस प्लेटफार्म से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि नए ग्राहक ऐप के माध्यम से यात्रियों को सुलभ किराया, पारदर्शी और निश्चित दरें, SOS आपातकालीन सुविधा, स्थानीय और विश्वसनीय चालक तथा बेहतर ग्राहक सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनते हैं हमारी बहनों का अपना कार्यक्रम महिला जगत।

0: वृक्षों की छांव हो, नदियों का निर्मल प्रवाह हो, हर नारी आत्मनिर्भर हो, हर जीवन में नव उल्लास हो।
1: नारी की शक्ति और प्रकृति की महिमा को नमन करते हुए आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य का संकल्प लें जहां महिलाओं को मिले सम्मान और पर्यावरण को मिले संरक्षण। और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं आज आपकी रेडियो दोस्त दीपिका स्वर्णकार
0: और नीलम जैन का स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हाँ बहनों, आपका पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत और इसी कार्यक्रम में आज हम प्रकृति के भावों से परिपूर्ण मतलब सराबोर होकर आज हम इस मंच पर उपस्थित हैं और आपसे बातें करेंगे पर्यावरण, वृक्ष, नदियों, पहाड़ों और झरनों से संबंधित।
0: बिल्कुल सही बात कही दीपिका। नारी और प्रकृति दोनों ही सृजन की अनुपम पहचान है। इनकी रक्षा और सम्मान से ही मानवता की शान है।
1: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय भी कुछ इसी तरह का है बहनों, यानी प्रकृति के प्रति जो है वो हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि नीलम प्रकृति हमें जीवन देती है और बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं, सुरक्षा या क्षति, संवेदनशीलता या उपेक्षा। और इसी सोच के साथ आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, और सखियों प्रकृति कोई बाहरी वस्तु नहीं है बल्कि हमारा विस्तारित परिवार है।
1: बिल्कुल,
0: मिट्टी हमारी रसोई से जुड़ी है, नदी हमारे जीवन से, जंगल हमारे मौसम से और जैव विविधता हमारे भोजन से। यदि परिवार प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने तो समाज और राष्ट्र दोनों अधिक टिकाऊ बन सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और देखा जाए तो प्रकृति है क्या, जो हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये सब मिलकर प्रकृति बनाते हैं।
1: और तो ये प्रकृति नीलम हमारे जीवन का आधार, जैसा कि अभी आपने बताया, जिसमें प्रकृति के बिना मानव सभ्यता का जो अस्तित्व है वो ही संभव नहीं है। हमारी हर सांस, हर भोजन और हर संसाधन जो है वो प्रकृति की देन है। लेकिन बहनों, आज कई तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। आज बढ़ता हुआ प्रदूषण ले लें, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग ले लें, जल स्रोत जो हमारे सूख रहे हैं और भूजल स्तर

0: में जो गिरावट आ रही है, वनों की कटाई और जैव विविधता जो संकट में है, ये सभी हमारे सामने आज चुनौतियां हैं।
1: बिल्कुल, और इसके लिए सबसे बड़ा जो कारगर उपाय है वो है कि 3R, यानी कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि कम यूज में, कम प्रयोग ले जितना संभव हो, पुनः उपयोग करें और चक्रित करें, मतलब जो चीज रिसाइकिल हो सकती है उसको रिसाइकिल करें। तो प्रदूषण को कम करें, प्लास्टिक और रासायनिक प्रदूषण से बचना चाहिए। प्रकृति मानव जीवन का मूल आधार है, यह हमें जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा, पीने योग्य जल और भोजन प्रदान करती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतें भी प्रकृति से ही पूरी होती है। इसके बिना मानव जीवन की कल्पना असंभव है। पर्यावरण संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है। प्रकृति को नुकसान न पहुंचाना, कचरे का सही निपटान करना, पानी और बिजली की बचत करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। और दीपिका, इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे और उपभोग के बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे। क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे सुंदर और जिम्मेदार तरीका है।
0: बिल्कुल, और बहनों, ये कार्यक्रम आपका है और आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के हम संस्कार विकसित करें, सामुदायिक स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान से जुड़ें, स्थानीय जल स्रोतों और हरित क्षेत्रों की रक्षा करें, यही हमारी पर्यावरण के प्रति भूमिका है और इसे हम जरूर करें। तो नदी पावन जीवनदायिनी, नीलम, मैं कुछ पंक्तियां कह रही हूँ कि नदी जो है पावन है, जीवनदायिनी है, धरती की मधुर कहानी है, कल कल करती बहती धारा, प्रकृति की अमर निशानी है।

0: ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, दीपिका, ये तब जब सारा हमको तब नसीब होगा ना जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल
0: हमें
1: बिल्कुल
0: स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हमारा विकास प्रकृति के साथ है या उसके विरुद्ध। क्या हम अपने बच्चों को केवल सुविधाएं दे रहे हैं या रहने योग्य पृथ्वी भी? आने वाली पीढ़ियाँ हमसे यही प्रश्न पूछेगी। और पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी, यानी ये केवल सहायक नहीं अभी तो अत्यंत महत्वपूर्ण और अग्रणीय है। इसके लिए इतिहास में भी बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। राजस्थान के खेजड़ली गांव में अमृता देवी विश्नोई द्वारा जो पेड़, मतलब खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, वो आज भी लोगों को याद है। और समय 363 लोगों ने अपने प्राण दिए थे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चिपको आंदोलन तो आपने सुना ही होगा, इसमें भी गोरा देवी की मुख्य भूमिका रही थी। नर्मदा आंदोलन में मेधा पाटकर की भूमिका रही थी। मतलब कि महिलाएं भी हर समय प्रति समय पर्यावरण को बचाने के लिए आगे रही, अग्रणी रही है।
1: बिल्कुल,
0: और आज भी हम चाहें तो ये शुरुआत हम अपने घर से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बड़े बड़े आंदोलन चलाए जाएं या बड़ी बड़ी भूमिका निभाई जाए। कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके सागर बढ़ता है, तो अगर हम शुरुआत अपने घर से भी करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा योगदान भी पर्यावरण को बचाने में रहेगा।
1: बिल्कुल बहनों, और पर्यावरण संरक्षण जो है वो आज की विश्व की वैश्विक आवश्यकता बन चुकी है। महिलाएं, मैं भी इसी टॉपिक पर आना चाह रही थी नीलम, कि परिवार है, समाज है और प्रकृति है, उसके बीच की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जल, वन, भूमि, और इन सभी के संरक्षण में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम जल संरक्षण की बात करें तो जल का विवेकपूर्ण उपयोग महिलाओं के द्वारा किया जाए, ये प्रमुख भूमिका है उनकी। रसोई, घरेलू कार्यों के माध्यम से संसाधनों को संतुलित उपयोग करें, साथ ही वृक्ष, पौधे और पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता की भावना जो है वो भी महिलाओं के माध्यम से होती है। और भारतीय परंपरा की बात करें नीलम, तो जैसे तुलसी है,
0: बिल्कुल हमारे यहाँ तो पूजा जाता है,
1: वृक्ष है, बिल्कुल, इनके संरक्षण, इनकी पूजा और देखरेख में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है।
0: बिल्कुल, और सखियों, कार्ल मार्क्स का कथन है कि सृष्टि में कोई भी बड़े से बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है। अतः महिलाओं ने सदैव ही पर्यावरण संरक्षण की बात की है, और इसकी शुरुआत हम रसोई से भी कर सकते हैं। रसोई पर्यावरण

0: कक्षा की प्रयोगशाला है, भोजन की बर्बादी रोकना, बचा पानी पौधों में डालना, सब्जियों के छिलकों से खाद बनाना, स्थानीय किसानों के उत्पादों को प्राथमिकता देना पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं। जितना स्थानीय और मौसमी भोजन अपनाया जाएगा उतना ही परिवहन और पैकेजिंग से होने वाले कार्बन उत्सर्जन घटेगा।
1: बिल्कुल।
0: और बच्चों को प्रकृति से जोड़ना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि माता हमेशा बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है और वे भावी पीढ़ी में प्रकृति के प्रति प्रेम, जल संरक्षण, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन जैसे बुनियादी संस्कार बचपन से ही टालती हैं। तो बच्चों को प्रकृति से जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि मिट्टी, पक्षी, पेड़ और तितलियों से उनका संपर्क ना हो तो पर्यावरण उनके लिए केवल विषय बनकर रह जाएगा, मतलब वो सिर्फ किताबों में ही पढ़ेंगे।
1: बिल्कुल। और नई पीढ़ी जो आज की पीढ़ी है उनको टिकाऊ जीवन शैली जो है वो अपनाने के लिए प्रेरित करना एक माता की जिम्मेदारी है, जिसमें स्वच्छ हवा की बात करें, एसी और कूलर से बाहर निकलकर नीम के पेड़ की बात करें, हवा की बात करें, जलाशय के शुद्ध जल की बात करें, तो ये पर्यावरण और प्रकृति से सीधा जोड़ना एक माता, एक बहन और एक दादी का जो है वो जिम्मेदारी है। और हम आज की चुनौतियों की बात करें तो वास्तव में जलवायु परिवर्तन जो है वो सबसे बड़ा और अधिक प्रभाव जो है वो उसका महिलाओं पर और बच्चों पर पड़ता है। पर्यावरणीय जो निर्णय होते हैं उसमें महिला एक पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करती है, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण शिक्षा की और जो है वो सशक्त बनाना एक महिला और बहन की ही जिम्मेदारी है। तो बहनों, आप निश्चित रूप से पर्यावरण जो है वो संरक्षित और सुरक्षित रखेंगी, और बातों का क्रम तो नीलम चलता ही रहेगा। और अभी सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: दीपिका, हम बात कर रहे हैं शुरू से पर्यावरण की, और जैसा कि आप सभी को पता होगा आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो सखियों, विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक तारीख नहीं बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। हमें ये सोचना होगा कि आने वाला समय क्या रहेगा, क्योंकि प्रकृति जो है वो हमें दिन पे दिन चेतावनी दे रही है। पृथ्वी लगातार चेतावनी दे रही है। मई जून की गर्मी असहनीय होती जा रही है। मानसून अनिश्चित हो गया है, कहीं सूखा है, कहीं अचानक बाढ़ है, जंगल में आग है, पिघलते हिमनद है, घटता भूजल और प्रदूषित नदियां संकेत है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन की सच्चाई बन चुका है, और जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान प्रकृति के पास पहले से मौजूद है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, मिट्टी भोजन और नदियां जीवन को गति देती है, पक्षी कीट परागण कर कृषि को सहारा देते हैं। प्रकृति केवल संसाधन नहीं, वह मौन व्यवस्था है जो पृथ्वी को रहने योग्य बनाती है। जब हम इस व्यवस्था को नष्ट करते हैं तो अपने भविष्य को नष्ट करते हैं।
1: बिल्कुल, और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रतिवर्ष 5 जून को ये मनाया जाता है, और इस दिन पर हम इतनी सारी प्रकृति से संबंधित बातें कर रहे हैं क्योंकि महत्व है इस दिन का। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना बहनों इस दिन का प्रमुख उद्देश्य है। उसके साथ ही साथ जल, वायु, वन और जैव विविधता का संरक्षण करना, और साथ ही भारतीय संस्कृति जो कि पर्यावरण के बहुत निकट है, तुलसी, पीपल, वट वृक्ष, ये सभी तो पर्यावरण जागरूकता की प्रथम शिक्षिका जो है वो हम बहने हैं। माँ बच्चों को जैसे स्वच्छता, जल बचत और प्रकृति प्रेम के संस्कार देती हैं, और आदतें वो परिवार में ही सीखता है, और नई पीढ़ी को ये सभी संस्कार देना एक माता और बड़ी बहन का, दादी का, नानी का दायित्व होता है।
0: बिल्कुल, और अगर प्रकृति सलामत रहेगी तो हमें बहुत असीम खुशी मिलती है। तो खुशी की पहली शर्तों में से एक यह है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध अटूट रहे। यह लियो टॉलस्टॉय ने कहा था, मनुष्य और पर्यावरण के बीच का संबंध महत्वपूर्ण है और यह आवश्यक है कि वे इसे समझें और इसे मजबूत बनाए रखने के लिए कार्य करें। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर संकल्प लें कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जल बचाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ एवं हरित पृथ्वी छोड़ेंगे। पर्यावरण की रक्षा मानवता का कर्तव्य है। प्रदूषण को खत्म करो इससे पहले कि वह हमें खत्म कर दे। अथर्ववेद में कहा भी है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी वया, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ।
1: बिल्कुल,
0: तो अगर हम एक तरफ तो कहते हैं पृथ्वी हमारी माता है, तो हम धीरे धीरे पृथ्वी को ही खत्म करते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई नीलम ने कि जब एक महिला पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेती है ना बहनों, तो केवल एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के प्रति जागरूक बनती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ ही नारी जब प्रकृति का सम्मान सिखाती है, धरती मुस्काती है, हरियाली गुनगुनाती है, और उसके छोटे छोटे प्रयासों से जग संवर जाता है।
0: बिल्कुल, और दीपिका, जो इस बार हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं तो सन 2026 की थीम है जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट एक्शन नाउ फॉर क्लाइमेट पर केंद्रित है। यह विषय पृथ्वी द्वारा भेजे जा रहे जलवायु संकट के संकेतों और मानव समाज द्वारा त्वरित सकारात्मक कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए। तो वैसे देखा जाए तो प्रकृति के लिए तो हमारे, मतलब जो कहते हैं ना कि पुराने कवियों ने भी बहुत सारी, मतलब इसके बारे में बातचीत की है, तो कुछ मुझे कबीर के दोहे याद आ रहे हैं। डाली छेड़ू न पत्ता छेड़ू, न कोई जीव सताऊं, पात पात में प्रभु बसत है, वही का शीस नवाऊं। तो कबीर दास जी का कहना है कि हमें कभी पेड़ों की डालियां या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, न ही किसी जीव जंतु को सताना चाहिए। हर पत्ते में ईश्वर का वास है, इसलिए प्रकृति के हर रूप का आदर करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: वृक्ष कबो न फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। मतलब वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते और नदियां कभी अपना पानी खुद नहीं पीती। ठीक उसी प्रकार प्रकृति की तरह ही सज्जन पुरुष भी दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन जीते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो मतलब यही है कि अगर प्रकृति ने हमें देना सीखा है तो हमें भी उसे रिटर्न देना चाहिए। तो ये मतलब एक बहुत छोटी सी बात है, छोटी समझो।
1: बिल्कुल, देने के नाम पर बहनों हम सिर्फ प्रकृति का संरक्षण करना, प्रकृति को गंदा न करना, प्रदूषण न फैलाना, इस तरह से हम उसको भी दे सकते हैं।
0: तो बस वही है कि प्रकृति के विनाश का परिणाम बहुत बुरा होता है। इस पे भी कबीर ने ऐसा बोला कि बकरी पाती खाती है।

0: आको काड़ी खाल, जो नर बकरी खाते तिनको कौन हवाल। कबीर जी जीवों और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि जो मनुष्य प्रकृति और जीव जंतुओं को बहरहमी से नष्ट करते हैं, अंततः तो उनका भी विनाश निश्चित है। और हम खुद देख रहे हैं कि प्रकृति कितनी बार अपने विकराल रूप में, अलग अलग रूप में आती है। कभी भूकंप आता है, तो कभी बाढ़ आती है, तो कभी हिम संकलन होता है। तो ये चीज़ें हम देख ही रहे हैं। तो अगर हम नष्ट करेंगे तो वो भी हमें नष्ट करेगी।
1: बिल्कुल, बातों का क्रम इतना ही मज़ेदार चलता रहेगा। लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
2: अरे अरे ए ए

0: तो नीलम, हमने बहुत प्यारा सा गीत सुना, ओ साथी चल। और वास्तव में ये पर्यावरण संरक्षण एक अकेले के बूते की बात नहीं है, हम सभी मिलकर ये साथ साथ चलकर एक पैगाम की तरह, एक संकल्प की तरह लें तो निश्चित रूप से ये सफल होगा। क्योंकि पर्यावरण जो है वो केवल हमारे चारों ओर का वातावरण नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है, और यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानवता का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। तो आज के दिन हम कुछ और बहनों, हमारे मतलब हमसे संबंधित कुछ ऐसी पहल करें, और वो पहल है किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने का तरीका।
1: बिल्कुल, और कैसे हम देखते हैं ना दीपिका, किचन वेस्ट बहुत सारा निकलता है।
0: बिल्कुल,
1: तो अगर हमको इसका सही तरीका पता हो तो हम खुद घर पे खाद बना सकते हैं, लेकिन अक्सर करके हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन आज हम हमारे सखियों से इसके बारे में चर्चा करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: सखियों, रसोई के गीले कचरे यानी कि छिलके, बची हुई चाय आदि को सूखे पत्ते या भूरे कचरे के साथ मिलाकर और थोड़ी नमी व हवा देकर आसानी से खाद बनाई जा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: और इसके लिए जो आवश्यक सामग्री होती है ना वो होती है गीला कचरा यानी कि ग्रीन वेस्ट नाइट्रोजन, जिसको नाइट्रोजन मिलता है, फलों और सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती और बचे हुए पौधे, और सूखा कचरा यानी कि ब्राउन वेस्ट कार्बन, सूखे पत्ते, गत्ते या अखबार के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा और भूसा, स्टार्टर माइक्रोब्स यानी कि थोड़ी सी पुरानी मिट्टी, गोबर की खाद या खट्टी छाछ, और एक आप मतलब डब्बा ले लीजिए, कोई भी कंपोस्ट बिन जिसका हम बनाना है। हाँ, मतलब यही कि कोई भी पुराना प्लास्टिक का डब्बा या बाल्टी लीजिए जिसमें नीचे या किनारों पर छोटे छोटे छेद हो ताकि पानी उसमें से निकल सके और हवा भी आती रहे, और इसे घर या बालकनी के किसी छायादार कोने में रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरह से बहनों आप बहुत अच्छी सी कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, और इसके लाभ हैं कि घर का कचरा तो आपका कम होगा ही, साथ ही साथ रासायनिक खाद की निर्भरता भी घटती जाएगी और पौधों की वृद्धि बेहतर तरीके से होगी, और पर्यावरण संरक्षण में आप एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। और
1: लेकिन जैसे हमने बताया ना कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, पर इसकी एक लेयरिंग प्रक्रिया भी है, यानी पहली परत सबसे नीचे सूखे पत्ते या गत्ते के टुकड़ों की 2-3 इंच की परत बिछाएं, उसके ऊपर दूसरी परत किचन के गीले कचरे, कटे हुए छिलके की परत डालें, तीसरी परत अब गीले कचरे को ढकने के लिए ऊपर से फिर से सूखे पत्ते और थोड़ी सी मिट्टी या थोड़ा सा गोबर डालें, इसी तरह कचरा और सूखे पत्तों की परतें ऊपर तक लगाते रहें, और कचरे को सड़ने के लिए हल्की नमी जरूरी है, अगर सूखा लगे तो बीच बीच में हल्का पानी छिड़कें, लेकिन इसे ज़्यादा गीला या दलदला न होने दें। बैक्टीरिया को पनपने के लिए आप बीच में थोड़ी मट्ठा यानी दही का पानी या गाय के गोबर का घोल भी डाल सकते हैं। मिश्रण को जल्दी खाद में बदलने के लिए हर 5-7 दिन में किसी डंडी या खुरपी से कचरे को ऊपर नीचे करें हवा देने के लिए, और लगभग 60 से 90 दिनों में यह मिश्रण गहरे भूरे रंग की भुरभुरी मिट्टी जिसमें से सौंधी महक आती है में बदल जाएगा। अब यह आपकी होम गार्डनिंग के लिए एकदम तैयार है।
0: बिल्कुल, तो होम गार्डनिंग की बात हमने घर के वेस्ट से हमने कर ही दी, और हम अगर हकीकत में बात करते हैं नीलम, जैसे कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हम उदयपुर के आसपास की बात करें, जो हरियाली और घनी जो हमारी पहाड़ियाँ थी, चाहे हम नांदेश्वर जी क्षेत्र की बात करें, तो ये पर्यावरण के बीच जो बदलता संतुलन है वो आज हम देखें और कुछ वर्षों पहले देखें

0: और हम उदयपुर के आसपास की बात करें, जो हरियाली और घनी जो हमारी पहाड़ियाँ थी, चाहे हम नांदेश्वर जी क्षेत्र की बात करें, तो ये पर्यावरण के बीच जो बदलता संतुलन है वो आज हम देखें और कुछ वर्षों पहले देखें तो वास्तव में ये कहानी बयां करती है। पहाड़ियों को चीरती सड़कें, सिकुड़ते खेत, घटती हरियाली, कंक्रीट का विस्तार और सीमित होते जल स्रोत प्रकृति पर बढ़ते दबाव को दर्शाते हैं। और कभी तो ये दूर दूर तक हरी भरी बिल्कुल वादियाँ फैली हुई थी, और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ निर्माण हो गए हैं और बहुत बहुत कुछ बदल गया है। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं हमारी प्राकृतिक संतुलन को जो है वो बिगाड़ने वाली तस्वीरें हमें नज़र आ रही हैं, है ना?
1: बिल्कुल सही बात है,
0: बिल्कुल। और आज के दिन निश्चित रूप से हमें को संकल्प लेने चाहिए, क्योंकि ये संकल्पों का दिन है। हमें शपथ लेनी चाहिए, सबसे पहले कि हम शपथ लें कि उदयपुर की झीलें और जलाशयों को हम अपने परिवार के साथ, उनके साथ मिलकर साफ रखेंगे, और साथ ही साथ खुद पानी में कचरा या प्लास्टिक विसर्जन नहीं करेंगे और ना ही दूसरों को ऐसा करने देंगे।
1: बिल्कुल, और छोटे छोटे कदम हम उठा सकते हैं, जैसे कि सड़क पर कचरा ना फेंकना, आप जो डस्टबिन्स होते हैं उनका उपयोग करें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, पानी और बिजली बचाएं, पेड़ लगाएं, गीले और सूखे कचरे को अलग करें। निगम की जो गाड़ी आती है उसमें भी ये व्यवस्था है कि सूखा कचरा अलग डालें, गीला कचरा अलग डालें। सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखें, ये मत सोचें कि पब्लिक प्लेसेस हैं।
0: बिल्कुल,
1: अरे उनका प्रयोग तो कर तो आप ही रहे ना,
0: आप ही
1: तो
0: बिल्कुल
1: इस बारे में हमेशा सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए ही है, तो हमेशा उनको भी स्वच्छ रखें, दूसरों को भी इस बारे में जागरूक करें। और विद्यालय में स्वच्छता और पर्यावरण शिक्षा को व्यवहार से जोड़ना आवश्यक है। बच्चे बचपन से स्वच्छता सीखेंगे तो जिम्मेदार नागरिक बनेंगे।
0: बिल्कुल, और उसके साथ ही साथ एक शपथ और मैं दोहरा रही हूँ कि हम ये शपथ लें कि हर साल खास अवसरों पर एक पौधा अवश्य लगाएंगे, और साथ ही साथ पौधे की अभिभावक की तरह हम देखभाल भी करेंगे और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम लेंगे। और साथ ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक, और अभी अभी आज की हमने पढ़ा सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो उदयपुर में पहल की गई है, है ना, कि जो हमारा
1: सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है वहाँ पर इस प्लास्टिक का बैन हो चुका है और वहाँ पे प्लास्टिक की बोतल भी ले जाना मना है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक बहुत अच्छी पहल है।
0: ज़रूर ध्यान रखें कि घर से निकलते समय हमेशा कपड़े या जूट का थैला रखें और अपने शहर को प्लास्टिक से मुक्त करें।
1: बिल्कुल, और दीपिका मेरा तो यही कहना है कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि हमारा वातावरण स्वच्छ होगा तो प्रकृति सुरक्षित होगी, और यदि प्रकृति सुरक्षित होगी तो मानव जीवन भी स्वस्थ और संतुलित रहेगा। जिस समाज की सड़कें, नदियाँ, गलियाँ और सार्वजनिक स्थल स्वच्छ होते हैं वहाँ केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और जागरूकता भी दिखाई देती है। तो ये तो हमने बात करी पर्यावरण के बारे में, और हम तो सखियों से ही कहते हैं शुरुआत अपने घर से करें, और सुनते हैं एक गीत।

0: तो बहनों, हमने बहुत प्यारा सा गीत सुना, नारी मुस्काए प्रकृति गुनगुनाए, हर आंगन में खुशियों के फूल खिल जाएं, यही कामना यही संदेश हमारा है। हरित धरा हो, सशक्त नारी हो, और यही भविष्य हमारा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलने के वादे के साथ लेते हैं विदा।
1: नमस्कार, नमस्कार।

बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:46 हुए हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। तो आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं आपके कुछ मन पसंदीदा फिल्मी नगमे। पहला गीत यलगार फिल्म से कुमार शानू और सपना मुखर्जी की आवाज में आपके रेडियो सेट पर आ रहा है। एंजॉय कीजिए फिल्म संगीत के सेगमेंट के इस पहले ट्रैक को।

सपना मुखर्जी और यलगार फिल्म के इस गीत के साथ हमने कार्यक्रम का आगाज कर दिया है और दिलकश सपना मुखर्जी का साथ निभाया इस गीत में कुमार शानू ने, दोनों के युगल स्वर में ये गीत सजाया गया। और कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं। इस

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: फसा अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: QR कोड स्कैन कर

0: कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी कहके तो देखो।
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो,

अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश के युगल स्वर में भाभी फिल्म का ये गीत भी आपने सुना। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और अब कार्यक्रम का ये आखिरी गीत विशाल मिश्रा और सचिन जिगर के युगल स्वर में स्त्री 2 फिल्म से आपके रेडियो सेट पर हम पहुंचा रहे हैं। एंजॉय कीजिए इस सेगमेंट के इस आखिरी गीत को और इजाजत दीजिए आपकी रेडियो दोस्त स्वाति को। इस वादे के साथ के फिर से बहुत जल्द मुलाकात होगी।

मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:10 हो चुके हैं और ये समय है विकास चर्चा का। विकास चर्चा के अंतर्गत हमारा आज का विषय है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। आइए आपको देते हैं इस योजना की जानकारी।

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई एक लोकप्रिय छोटी बचत योजना है।

इस योजना से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं जिनकी जानकारी हम आपसे साझा करते हैं। इस योजना का हिस्सा बनने के लिए 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के माता पिता या कानूनी अभिभावक उनके नाम पर ये खाता खोल सकते हैं। एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए यह खाता खोला जा सकता है। निवेश सीमा की बात करें तो इस योजना में किसी भी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की राशि को जमा किया जा सकता है।

इसकी निवेश अवधि की बात करें तो खाता खुलने की तारीख से 15 वर्षों तक इसमें निवेश करना अनिवार्य है। ब्याज दर की अगर हम बात करें तो वर्तमान में इस योजना पर सरकार द्वारा 8.2

इस योजना की मैच्योरिटी की बात करें तो यह खाता खुलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने पर या 18 वर्ष की आयु के बाद बालिका के विवाह के समय परिपक्व होता है। टैक्स लाभ में इस योजना में जमा की गई राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट मिलती है और इस पर मिलने वाला ब्याज व मैच्योरिटी की राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।

0: योजना के अंतर्गत जमा की गई राशि को खाते से कब निकाला जा सकता है, इसकी जानकारी भी हम आपसे साझा करते हैं। बालिका की 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मामले में शिक्षा और अन्य खर्चों के लिए खाते में जमा राशि का 50% तक निकाला जा सकता है। आवेदन कैसे करें, इसकी जानकारी आप किसी भी नजदीकी भारतीय डाकघर या अधिकृत सरकारी निजी बैंक में जाकर आवश्यक दस्तावेज के साथ यह खाता खुलवा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि शामिल हैं। योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इंडिया पोस्ट या अपने नजदीकी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे विकास चर्चा। विकास चर्चा के अंतर्गत हमारा आज का विषय था प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रूपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
3: आफ्टर अ डिटेल्ड असेसमेंट।
4: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से एलएएफ के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
5: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी

0: ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ ने जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं।
5: लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम पेमा भाइ, राम राम।
1: राम राम अनिता भाइ सर, राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनो वाला हंगला किसान भाई ने आपनो राम राम
1: राम सा।
0: देखो पेमा भाई कार्यक्रम रो टाइम भी और अपना संगला किसान भाई अपने कार्यक्रम में आया ऐसा। और देखो आप कार्यक्रम में आवा तो आप अपने किसान भाई ने घनी हारी जानकारी भी देवा सा और हाथी हाथी आने मनोरंजन करा वास्ते बढ़िया राजस्थानी लोकगीत भी अपना सुनावा सा।
1: सही कह रहा हो सर। आप ही देखो किसान भाई री बात करा तो आज आप ही जानकारी दे रहा है कि पर्यावरण और अपना खेती रो आपस में कई रिश्तों है, कई संबंध है सा।
0: बिल्कुल।
1: तो देखो सर, पर्यावरण और खेती को रिश्तों एक सिक्का रहा दो पहलू कहो जावे, क्योंकि देखो दो ही एक दूसरा के ऊपर निर्भर व्या करे और पर्यावरण खेती के आधार पर चले है। और देखो खेती को काम जो है वणी का तरीका है, वणी का तय करे कि देखो पर्यावरण कणी तरह रहनो ऐसा।
0: बिल्कुल सही बात की दिशा। और अंडा गहरा रिश्ता ही अगर आप बात करा तो देखो ये भी आप मुख्य रूप दो दृष्टिकोण आप देखी सके। हाँ सर, कि सबू पहला कि जो पर्यावरण और खेती पर जो प्रभाव पड़े यानी कि पर्यावरण कड़ी तरह खेती ने संवारे हैं। देखो खेती पूरी तरह आप देखा तो प्राकृतिक संसाधन पर टिकी थकी हुए ऐसा, और पर्यावरण के बिना खेती की जो कल्पना है वह भी आप नहीं कर सका। हाँ सर।
1: देखो सर, में सबू मोटी बात आवे कि मिट्टी की उर्वरता।
0: हाँ सर।
1: आपने मिट्टी में देखो मौजूद केंचुआ है, सूक्ष्म जीव है, जैविक कार्बन है, ये देखो अपना फसल के वास्ते जरूरी पोषक तत्व है। और स्वस्थ मिट्टी के वास्ते देखो अच्छी फसल की नींव व्या करे सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो मौसम और जलवायु की अगर आप बात करा तो अन्य फसल ने एक निश्चित तापमान की जरूरत हुए सा, धूप और बारिश की जरूरत हुए सा, और मानसून रो जो चक्र है वो अपनी पारंपरिक खेती ने जान भी वे है सा।
1: और प्राकृतिक परागकण की बात करा तो देखो मधुमक्खियां है, तितलियां है और अन्य तरह का कीट है जो अपना फसल रा महीने परागकण को काम करे है। और वना देखो फसल जो है अपना फल है, अनाज है।

0: बढ़ावा और काम करे। और अगर देखो पर्यावरण में देखो ये चीजें जो गायब हो जावे तो उत्पादन जो है वो ठप हो सके।
1: बिल्कुल सही बात करी साहब। देखो पेमा भाई, अगर जल चक्र की अगर आप बात करें तो देखो नदियाँ हैं, भूमिगत जल है, बारिश इस जितना भी पर्यावरण का संतुलन है संचालित कर रहे हैं सा, जो कि फसल सिंचाई रो मुख्य जरियो भी वे सके हैं सा।
0: देखो सा अपने मानव इतिहास में खेती ने देखो पर्यावरण ने बदलवा को काम भी किदो है सा,
1: हाँ सा।
0: लेकिन आज के टाइम पे कही का हम अपना खेत र महीने देखो कणी आ रही का तरीका जो तरीका है वणियों पर्यावरण पे असर पड़ रही हो सा। और अब पर असर कणी तरह को पड़ रही हो कि देखो आधुनिक और रासायनिक खेती जो आप करा तो वणी का नकारात्मक प्रभाव पड़े। यदि कही का बिना सोचे समझे आप केवल अधिक मुनाफा री सोच नहीं काम करता रहा तो प्रकृति के खिलाफ जो काम व्या करे सा।
1: बिल्कुल सा, जो कि बहुत ही नुकसान करे हैं सा। मिट्टी ने बंजर वेवा में अत्यधिक अपवाद करा तो रासायनिक खाद है, अंडों इस्तेमाल करेंगा तो देखो अनेक कहीं कि मिट्टी का मित्र कीट है वे भी मर जावेगा सा, और जमीन की जो प्राकृतिक ताकत है वह भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगा सा।
0: और जल प्रदूषण की देखो बढ़ोतरी वही जावे अपने खेत र महीने बेन जो निकलता देखो जो रसायन है वो अपना नदी र महीने पहुंचे भूमिगत जल में मिल जावे उन्हों को एक जल ने जहरीलो बनावरो काम करे तो अन्य तरह को जो प्रदूषण को काम भी वैसा।
1: हाँ सर। और देखो पराली जलावा है, रसायन अत्यधिक उपयोग कई वेगा ग्रीन हाउस गैसा निकलवा लगी जाएगा, चढ़ियों कई वेगा कि मौसम रो जो मिजाज है वो भी बदलते रहेगा, मतलब असमय अपने बारिश भी वेती रहेगा या पाचे सूखो भी वे सके ऐसा।
0: अब देखो सा दूजी बात यह है कि पर्यावरण और अनुकूल खेती।
1: हाँ सर।
0: अब आप ही देखो कि समझदारी की बात आप ही करा तो अपने खेत र महीने पर्यावरण जो है वन्य वंचावार वास्ते कुछ काम व्या करे वहां अपने अपनावना पड़ेगा सा।
1: बिल्कुल सर। सबों पहले अपने कहीं करना है कि एकीकृत जो कृषि प्रणाली है अंडी अगर आप बात करा तो अंडी में फसल उत्पादन के साथ साथ अपने पशुपालन है, केचुआ खाद है, बागवानी का जोड़ा जो वे है ये एक अवशेष दूसरा रे कामयाब है, जड़ू कई वेगा जो कचरो है वो शून्य वे तो जावेगा सा।
0: देखो सा अनीता भाई सा आपकी जानकारी जो दे रहा हाँ वह
1: हाँ
0: पर्यावरण और खेती का रिश्ता की दे रहा
1: बिल्कुल
0: जानकारी ना आप ये आगे देवा वाणी पहले आप एक राजस्थानी गीत सुने था सा।
1: बिल्कुल सुना सा।

0: subscribe.
1: दी, हाँ, ये देख कैसे?
2: Happy birthday, भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा favorite color हमेशा shopping.
4: I know माँ, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है.
6: I know बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा.
4: I know ना.
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो financially smart.
8: તો પીમા ભાઈ આપણે વાત કરી રહ્યા પર્યાવરણ અને ખેતીનો જે રિશ્તો હોય અને મેં આપણે વાત કરી રહ્યા કે જો એકીકૃત કૃષિ પ્રણાલી કહી અને બારામાં બતાવ્યો અભે બતાવા કે જૈવિક ઓર પ્રાકૃતિક ખેતી રે બારામાં સા
9: સહી કહી રહ્યા સા દેખો રાસાયણિક કીટનાશક જો હે વણે કી જગહ પે પી નીમ રો તેલ હે છાછ હે જૈવિક નિયંત્રણ કા વાસ્તે આપી ઇસ્તેમાલ કરના ચાવા વણ્યું કહી હે કે પર્યાવરણમાં શુદ્ધતા વણી દીકી રહેગા और जो आप जो रासायनिक नुकसान भी वड़ा है अपना खेत में फसल में अपना शारीरिक नुकसान है वड़ा आप ही वंचित कर रही
8: है. बिल्कुल सही बात की सा. और अंडे अलावा जल संरक्षण रे कर आप बात करा तो देखो ड्रिप एंड इरीगेशन जिन्हें कि आप टपक सिंचाई कह सका सा स्प्रिंकलर जिन्हें कि आप फवारा सिंचाई कह सका असी तकनीकें अगर आप काम में लंगा तो पानी की भी भारी बचत अड़ी में बह सकेगा सा. और जो पानी है वो जमीन में नमी भी अड़ी वणी थकी रहेगा और पानी सीधो अपने वहाँ पेड़ है पौधा है या वणी जब फसल महीने जड़ तक जाएगा सा.
9: और देखो सा आगे की स्थिति देखा तो अपना सतत कृषि जो है वणी में आज के टाइम की मांग है और अपना प्रकृति ने नुकसान पहुंचा वाली जो बात है वणी वंचवार वास्ते तकनीक ने अपना अधिकार पे काम करना चाहवा. वणी कोई है कि देखो अपना फसल है वणी में विविधीकरण बणियो देखो रहेगा अपना पेड़ पौधा है अपने फसल है वणी में एक साथ उगवा वाला जो है वणी में भी कणी तरह को नुकसान नहीं वेगा. मिट्टी की सेहत जो है वह बणी दिख रहेगा वणी को ध्यान आप ही रखता रहेगा और पर्यावरण और खेती में देखो एक रिश्तों है वो मजबूती वणी देखो रहेगा.
8: बिल्कुल सही बात की सा. और देखो खेती पर्यावरण का एक हिस्सों है अगर आप पर्यावरण ने बचावेंगा तो अपनी जो खेती है वह भी बची सकी रहेगा सा. और आवा वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं वे भी शुद्ध भोजन करेगा सा सुरक्षित धरती उन्होंने मिल सकेगा सा.
9: सही कह रहे हो सा. देखो पर्यावरण और खेती को रिश्तों जो है आप ही बताए तो उनमें आप ही ध्यान रखना चाहवा कि अपने मिट्टी ने कणी तरह नुकसान पहुंच रो है.
8: हाँ?
9: रासायनिक को इस्तेमाल करवाऊँ और अपने फसल में का माध्यम जो अपना मानव शरीर का महीने रासायनिक असर किस तरह पहुंच रो है जो कई तरह की बीमारियों की वजह बन रही है.
8: बिल्कुल
9: तो ये बात अपने ध्यान रखनी पड़ेगा. और अपने खेत ऊपर जो आप पेड़ पौधा भी लगावा तो अपने की उपयोगिता कतरी व्या करे वो भी अपने ध्यान रखना पड़ेगा. पर्यावरण संरक्षण को पूरा ध्यान रखता दिखे जो आप खेती बाड़ी को काम करा तो देखो आप ही पर्यावरण को संरक्षण भी कर सका अपना मानव जाति को कल्याण को काम भी कर सका और आवा वाली पीढ़ी रे वास्ते आप ही सुरक्षित माहौल सुरक्षित हवा और देखो कि शुद्ध जो है जल आप ही उपलब्ध कराई सकेंगा.
8: बिल्कुल सा. तो देखो ये चीजें अपने ध्यान रखनी सा. और अभी को तो अपने किसान बहन एक और बड़े राजस्थानी लोग सुने ना सा.
9: हाँ सा सुना है गीत.

0: प्रस्तावना। जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: तो पेमा भाई, यो बढ़िया गीत सुनाए और हाथे हाथे संदेश भी सुनाए सा, कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा सा।
2: हाँ सा।
1: और बात करा, देखो आज है विश्व पर्यावरण दिवस, तो अन्य बारे में आप अपने किसान भाई ने जानकारी देवा सा।
2: देखो सा, विश्व पर्यावरण दिवस जो है अभी मनाई रहा, आज रुदन है और आज अभी मनाई रहा, तो इसकी महत्व जो है अपना पर्यावरण को अपना संरक्षण करना है।
1: बिल्कुल सर।
2: अपने धरती है, अपने प्रकृति है, यानी की रक्षा अपने करनी है और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और समझदारी वेणी चाहे।
1: बिल्कुल सर। और देखो अंडे महत्व और इतिहास भी अगर आप बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंडी जो शुरुआत 1972 में की दी है सा, और अंडो जो मुख्य उद्देश्य है लोगों ने पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है सा, और प्रकृति ने नुकसान पहुंचाने वाली जितनी भी गतिविधियां है विने
2: रोकनो है सा। देखो सा, अपना दैनिक जीवन में पर्यावरण की सुरक्षा वास्ते कुछ जो है छोटा छोटा काम व्या करे, छोटा छोटा कदम है वे अगर आप ही उठाता रहा, आप ही करता रहा, तो अपना पर्यावरण को जो है संतुलन वणियों दुखो रहेगा। इनमें सब पहली बात है पौधरोपण करनो। अपना आसपास का माहौल में खाली जगह जिते भी दिखे अपने स्थानीय स्तर पर छायादार जो है पौधा लगाना, जिक वे बड़ा विन जो है छाया देवा लग जाए।

0: और वणा की देखभाल को लेवा को करवा को अपना संकल्प लेनो चाहवे सर।
1: बिल्कुल सर, हाथ ते पानी री हर बूंद ने कीमत समझणो सा, बारिश के पानी ने सहेजनो है सा, वंडा जितना भी तरीका है इकट्ठा करवा रहा विने भी अपने अपनाना चाहवे सा और उन्होंने सीमित उपयोग करना चाहवे ताकि कहीं जल संरक्षण वेतो रहेगा सा।
0: मिट्टी की सेहत की बात करना तो देखो रासायनिक बजाय आपकी जैविक खाद है, प्राकृतिक तरीका है वणा ने बढ़ावा देना चाहवा, जेणी कही का अपनी धरती पे उपजाऊ क्षमता जो है वह बनी दिखी रहे।
1: बिल्कुल सर, और देखो कचरा प्रबंधन ने अगर आप बात करा तो देखो प्लास्टिक रो जो उपयोग है मैंने कम करना और गीला और सूखा कचरा ने अपने अलग अलग तरीकों लेना चाहे सा।
0: सही कह रहे हो सर, प्रकृति में अपने जो कुछ भी अपने मिले हैं तो वणिक में एक उपहार के रूप में मिले हैं, और अगर आप भी चाहवा तो देखो अपने मिट्टी है, पानी है, जंगल है वणा ने आप सुरक्षित रख सका, और अपना जिम्मेदारी बने कि आपकी आवा वाली पीढ़ी है वणा का वास्ते कुछ छोड़ न जावा।
1: बिल्कुल सर, तो देखो या तो आप बात की थी कि विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, और अभी आपको तो अपने किसान बने एक और गीत सुनाई दे सा।
0: हाँ सर।

0: तो अनीता भाई सर, राजस्थानी गीत सुनो सर। आज के कार्यक्रम में आपकी जो पर्यावरण संबंधी जानकारी दी थी, खेती बाड़ी संबंधी जानकारी दी थी और काम काजरी वाता की दी है सर।
1: बिल्कुल सर,
0: जानकारी देवार वास्ते और भी है पर घड़ी हमू नाला तो कार्यक्रम जावारी टाइम वेरी है। तो चला सा
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सर।
0: सा।

किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 3 बजने को हैं और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक के कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम दमन जाएंगे। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रूपये की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BAS को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर

5.1% कर दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्रार्थना

0: से पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी है। पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:05 हो चुके हैं। हमारी पहली सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। सांध्यकालीन सभा के प्रसारण लेकर शाम 5 बजे हम एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम के 5 बज चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं हमारी सांध्यकालीन सभा और सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

0: हेलो दोस्तों, मैं हूं निधि जैन और मेरे साथ हैं
1: मानस व्यास।
0: और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जहां बात होती है आपके सपनों की, आपके जुनून की और आपके भविष्य की।
1: दोस्तों, आज का शो काफ़ी खास होने वाला है, जहां हम बात करने वाले हैं यूथ और इंडस्ट्री की और कई ऐसी शख्सियतों की जो अपने फील्ड्स में काफ़ी पॉपुलर हैं। तो चलिए हमारा कार्यक्रम शुरू करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: दोस्तों, आज के समय में फैशन युवाओं के जीवन का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है और यह फैशन केवल कपड़ों जूतों तक ही सीमित नहीं है बल्कि दूसरी एक्सेसरीज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। आज हम उसी में से एक वॉच के बारे में बात करने वाले हैं।
1: दोस्तों, वॉच जो है वो फैशन पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालती है। यह व्यक्ति की पर्सनैलिटी और उसकी सोच को बताती है। युवाओं की स्टाइल के साथ उनकी प्रोफेशनल लाइफ को दर्शाने का काम करती है और लोगों के डेली वेयर का पार्ट बन चुकी है।
0: दोस्तों, आज के जो आधुनिक दौर है इसमें काफ़ी सारी एडवांस वॉचेस आ चुकी है, लेकिन अगर हम पुराने समय में देखें तो फिर काफ़ी समय देखने का जो तरीका था वो काफ़ी अलग था और घड़ियाँ भी काफ़ी अलग थी। जैसे कि सनडायल यानी कि सूर्य घड़ी, समय मापने का सबसे प्राचीन तरीका जो कि सूर्य की रोशनी से बनने वाली छाया पर आधारित है।
1: बिल्कुल मानस। और इसके साथ में जल घड़ी, वाटर क्लॉक, जो कि एक पात्र से दूसरे पात्र में पानी के फ्लो पर बेस्ड समय मापने का तरीका है और जिसका उपयोग लगभग 3500 वर्ष पहले किया जाता था। और साथ ही साथ रेत घड़ी, आवर ग्लास जिसे हम कहते हैं, दो कांच के पात्र के बीच से रेत के गिरने से जो समय का हम अनुमान लगाते थे तो वो हमारी रेत घड़ी थी।
0: इसके बाद में मॉडर्नाइजेशन चालू हुआ और मैकेनिकल क्लॉक्स आई जो कि यूरोप की ऊंची बिल्डिंगों में देखने को मिलती है। साथ में भारत में भी हमें कई सारी ऐसी जगह घड़ियां देखने को मिलती है, जैसे कि अगर हम बात करें तो राजाबाई टावर की बात हो गई, सीएसटी स्टेशन की बात हो गई और अगर हम हमारे उदयपुर की बात करें तो घंटाघर देख सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और फैशन में जगह बनाते हुए धीरे धीरे मार्केट में आई पॉकेट वॉच, जो कि उस दौर के अमीर लोगों की पसंद थी।
0: दोस्तों, वॉच इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी पुरानी और पॉपुलर इंडस्ट्री में से एक मानी जाती है, जो कि फैशन, टेक्नोलॉजी और टाइम मैनेजमेंट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। यह इंडस्ट्री हर दशक में कुछ नया लाकर आती है और लगातार प्रोग्रेस भी कर रही है।
1: साथ ही साथ शुरू में घड़ियां हाथ से बनाई जाती थी, इसलिए काफ़ी महंगी होती थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से बड़े पैमाने पर घड़ियों का प्रोडक्शन शुरू हो गया था। तो 20वीं शताब्दी में क्वार्ट्ज की घड़ियां मार्केट में आई, जो अपने साथ साथ मतलब एकदम सटीक होती थी।
0: दोस्तों, जो वॉच इंडस्ट्री है उसमें कई सारे पार्ट्स में भी डिवाइडेड है, जैसे कि रिसर्च एंड डिज़ाइन, जिसमें नई घड़ियाँ डिज़ाइंस की जाती है और उसके लिए नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप की जाती है, और डिज़ाइन के बाद में आती है मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ घड़ियों के जो पुर्जे हैं और पार्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों। और मतलब साथ ही साथ में जो हमारी वॉच इंडस्ट्री है तो उसके कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि रिसर्च एंड डिज़ाइन, और उसके साथ साथ घड़ी बन जाने के बाद में उसकी ब्रांडिंग करना, एडवर्टाइजमेंट देना और अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए लगातार सेलिंग पर ध्यान देना।
0: वॉच इंडस्ट्री में दोस्तों युवाओं की भी काफ़ी बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि यह वर्ग सबसे बड़ा उपभोक्ताओं में से एक माना जाता है। यह फैशन और टेक्नोलॉजी के प्रति अपना जो रुझान है उसको काफ़ी निखारता है।
1: हाँ दोस्तों।

0: दोस्तों, और न केवल कंज्यूमर के रूप में बल्कि युवा इसे डिजाइनिंग के रूप में भी काम में लेते हैं और नए नए डिजाइन्स उसमें बनते जा रहे हैं। इंजीनियर्स और मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के रूप में भी अपना योगदान दे रहे हैं और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरह यह भी इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यह एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है। प्रोडक्शंस की से लेकर मार्केटिंग से लेकर सेलिंग तक, यह हर वर्ग में कई लोगों को जो है वो रोज़गार दे रहा है। घड़ी ख़राब होने पर भी अगर हम देखें तो छोटे दुकानदारों को भी यह एक मौका देता है।
0: और मेक इन इंडिया के तहत ट्रेडिशनली डिज़ाइंस के साथ साथ घड़ी को तैयार करके उसे मार्केट में एक्सपोर्ट भी करते हैं और लगातार नए डिज़ाइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से ग्रोथ भी कर रहे हैं।
1: फैशन से हटकर अगर हम फिटनेस में भी देखें तो घड़ी काफ़ी ज़्यादा कॉमन और हेल्पफुल बन चुकी है। चाहे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो या फिर और कुछ भी, तो आप अगर देखेंगे तो आज का जो एडवांस्ड वॉचेस है, ये आपको पूरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेती है।
0: और GPS जैसी टेक्नोलॉजी और डिस्टेंस स्पीड की सटीक जानकारी भी मिल जाती है और सेंसर्स जैसे हमारी BP, हार्ट रेट ये सब भी चेक कर सकते हैं।
1: डेली ट्रैकिंग का फ़ायदा दोस्तों ये मिलता है हमें कि इससे आप कंटिन्यूसली अपने वर्कआउट को है जो कि आप ट्रैक कर सकते हैं और प्रोग्रेस को आप रेगुलरली चेक कर सकते हैं और अपनी कमी को भी आप पहचान सकते हैं।
0: अब जैसे ओलंपिक, स्विमिंग, एथलेटिक, ये सारे जैसे जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं, इनमें छोटे से छोटे सेकंड का भी काफ़ी महत्व होता है और ऐसे में ट्रेनिंग के लिए हर वक्त सटीक जानकारी के लिए ये घड़ियाँ काफ़ी यूज़फुल होती हैं।
1: और दोस्तों अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए ऐसी वॉच प्रीफर करते हैं तो फिर आपको बता दें कि यह काफ़ी हद तक महंगी भी आती है, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्वालिटी भी हमें मिलती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो दोस्तों, आज के शौर्य गाथा सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसी साहसी बेटी की जिसने मानवता और कर्तव्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यह कहानी है निडरता, त्याग और अदम्य साहस की मिसाल निर्जा भनोत की।
3: इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपने साहस से अमर हो जाते हैं। निर्जा भनोट का एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने संकट के समय की घड़ी में सैकड़ों लोगों की जान बचाकर जो है वीरता की एक नई मिसाल कायम की है।
2: निर्जा भारतीय फ्लाइट अटेंडेंट थी और उन्होंने पैन एम फ्लाइट 73 में सवार कई लोगों की जान बचाई। बात है 5 सितंबर 1986 की, जब पैन एम फ्लाइट 73 बॉम्बे से कराची होते हुए न्यूयॉर्क जा रही थी।
3: तभी कराची में अबू निदाल संगठन के 4 फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने फ्लाइट हाईजैक कर ली। इस फ्लाइट में लगभग 380 पैसेंजर्स थे और 13 क्रू मेम्बर्स मौजूद थे।
2: हाईजैकर्स का इरादा साइप्रस जाकर फिलिस्तानी कैदियों की रिहाई की मांग करना था। जैसे ही हाईजैकर्स फ्लाइट में सवार हुए, निर्जा ने कॉकपिट क्रियो को पहले से ही वार्न कर दिया था।
3: पायलट इंजीनियर ने ओवरहेड हैच से जो है विमान छोड़ दिया और जिससे कि पायलट न होने के कारण प्लेन ग्राउंडेड हो गया और टेक ऑफ भी नहीं कर पाया। इसके बाद सबसे सीनियर क्रू मेंबर होने के नाते निर्जा ने ही केबिन की जो जिम्मेदारी थी वो संभाली।
2: हाईजैकर्स ने मेनली अमेरिकन और अमेरिकन प्रॉपर्टी को निशाना बनाया। हाईजैक के तुरंत बाद भारतीय अमेरिकी यात्री की पहचान कर उसे एग्जिट डोर पर लाकर उनकी हत्या कर दी। बचे हुए अमेरिकन की पहचान करने के लिए हाईजैकर्स ने निर्जा को पासपोर्ट इकट्ठे करने को कहा।
3: निर्जा और उनके निर्देशानुसार केबिन क्रू ने लगभग 43 अमेरिकन पैसेंजर्स के पासपोर्ट सीटों के नीचे और कचरे के डिब्बे में फेंकने वाले रास्ते में छिपा दिए। 17 घंटे तक गतिरोध करने के बाद में हाईजैकर्स ने एक्सप्लोजिव उड़ा दिए।
2: निर्जा और उनके निर्देशानुसार जो और कैबिन में गोलीबारी शुरू कर दी थी और फिर भनोत ने इमरजेंसी एग्जिट खोला और खुद भागने के बजाय वहीं फ्लाइट पर पैसेंजर्स को निकालने में रुकी रही।
3: ये देखा हाईजैकर्स के जो नेता थे उन्होंने काफ़ी करीब से गोली मार दी और इस बलिदान के लिए उन्हें कई सम्मान भी मिले, जैसे कि 1987 में अशोक चक्र, 1987 में तमगा है इंसानियत पाकिस्तान सरकार द्वारा और 1987 में ही फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन की तरफ से हीरोइज्म अवार्ड। और दोस्तों, साथ ही बात करें तो निर्जा पर ये फिल्म भी आई थी जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इसी पर एक गीत।

0: दोस्तों, अब एंटरटेनमेंट की बात करते हुए बात करते हैं हमारी कुछ न्यू रिलीजेस फिल्मों की, जिसमें सबसे पहली फिल्म की बात कर रहे हैं हम, हे जवानी तो इश्क होना है, जो कि थिएटर्स पर रिलीज़ हो चुकी है। अगर इसके कास्ट की बात करें तो पूजा हेज, वरुण धवन, जिमी शेरगिल हमें देखने को मिलने वाले हैं। ये एक कॉमेडी जेनर की फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं डेविड धवन।
1: इसी के साथ हम अगर बात करें एक और फिल्म की जो कि सिनेमाज में रिलीज़ हो चुकी है, तो वो है बंदर। और इसकी कास्ट में नज़र आएंगे बॉबी देओल, सबा आज़ाद। ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है और इसके डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप।
0: साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है, जैसे कि माँ बहन, ये कि एक माधुरी दीक्षित, तृप्ति दिमनी और रवि किशन इसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं। ये एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसमें डायरेक्टर किया है सुरेश त्रिवेणी ने।
1: और इसी के साथ OTT पे रिलीज़ हो चुकी है मेड इन इंडिया, अ टाइटन स्टोरी, धुरंधर द रिवेंज और गुल्लक सीजन 5, माइकल जैक्सन द वर्डिक्ट।
0: अब दोस्तों आगे बात करते हैं और चलते हैं हमारे इंडियन सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस की ओर जिन्होंने अपनी खूबसूरती, शानदार एक्टिंग और जीवंत स्क्रीन प्रेजेंटेशन को लेकर लाखों लोगों के दिल जीत लिए हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, साउथ इंडियन मूवीज से लेकर बॉलीवुड तक खुद की प्रतिभाशाली पहचान बनाने

0: वाली कलाकार को दुनिया रंभा के नाम से जानती है। आज इनके बर्थडे पर हम बात कर रहे हैं येदी विजय लक्ष्मी की,
1: जो कि 1990 के दशक और 2000 के दशक के शुरुआत के वर्षों तक इंडियन सिनेमा की लीडिंग एक्ट्रेस में से एक रही। लगभग दो दशक तक इन्होंने अपने एक्टिंग के करियर में रंभा ने 8 भाषाओं में से 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है,
0: जिनमें मेनली तमिल, तेलुगू के साथ साथ हिंदी, मलयालम, कन्नड़ के अलावा कुछ भोजपुरी, बंगाली फिल्में भी शामिल हैं। मलयालम फिल्म सरगम से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की।
1: 7 क्लास में इनके जो एनुअल डे था, इस कार्यक्रम पर इन्होंने अम्मा वरु की भूमिका निभाई थी। इस कार्यक्रम में डायरेक्टर हरिहरन भी मौजूद थे।
0: वे विजय लक्ष्मी के संपर्क में रहे और बाद में इन्होंने मलयालम फिल्म सरगम में मेन एक्ट्रेस के रूप में पेश किया।
1: दोस्तों, इनका जो पहला ऑन स्क्रीन नाम अमृता था, जिसे इन्होंने बाद में अपनी डेब्यू तेलुगु फिल्म आ ओकट्टी अड्डुकु में किरदार के नाम पर रंभा रख लिया।
0: अपने एक्टिंग के करियर के बाद अब वे टीवी होस्ट और जज के रूप में कई शोज में नजर आती हैं।

0: दोस्तों, जब भी भारतीय टेनिस का इतिहास लिखा जाएगा, एक नाम सुनहरे अक्षरों में चमकेगा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बिना किसी शोर के अपने आर्टिस्टिक शॉट से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। हम बात कर रहे हैं भारत के महान टेनिस स्टार, जो कि एक कोच भी हैं और पेशेवर टेनिस खिलाड़ी भी रह चुके हैं, रमेश कृष्णन की।
1: 5 जून 1961 को मद्रास में जन्मे रमेश के खून में ही टेनिस था। उनके पिता रामनाथन कृष्णन खुद भारत के बहुत बड़े टेनिस दिग्गज रह चुके थे, लेकिन रमेश ने अपनी अलग पहचान बनाई। साल 1979 में उन्होंने जूनियर विंबलडन और फ्रेंच ओपन का खिताब जीतकर दुनिया को बता दिया कि भारत का यह लड़का रुकने वाला नहीं है।
0: वह दौर के बड़े बड़े ताकतवर खिलाड़ियों का था और जो अपनी तेज सर्विस से डराते रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने शांत दिमाग, गजब के कोर्ट विजन और आर्टिस्टिक शॉट्स के लिए वे जाने जाते थे।
1: उनके करियर का सबसे बड़ा धमाका हुआ साल 1999 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में, जब उन्होंने दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी मैट्स विलेंडर को हराकर पूरे खेल दुनिया में तहलका मचा दिया था। इतना नहीं दोस्तों, बल्कि वे 3 बार ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल्स में भी पहुंचे और ईयर 1987 में भारत को डेविस कप के फाइनल तक पहुँचाने के लिए सबसे बड़े हीरो भी बने।
0: उनकी इसी महानता के लिए भारत सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। आज भी वे चेन्नई में अपनी एकेडमी के जरिए भारत के कल को सवार रहे हैं।
1: दोस्तों, वो टेनिस प्लेयर के बाद में बात करते हैं एक ऐसी खिलाड़ी की जिन्होंने मैदान पर सिर्फ दौड़ना नहीं सीखा बल्कि मुश्किलों को पछाड़ कर वापस उठना भी सीखा है। यह है भारत की मशहूर एथलीट मचित्र राजू पुवम्मा।
0: वे एक भारतीय स्प्रिंटर हैं जो कि 400 मीटर दौड़ में विशेषता रखती हैं। कर्नाटक की रहने वाली पुवम्मा ने देश के लिए 400 मीटर की रेस में सालों तक अपना पसीना बहाया है, चाहे वो साल 2014 और 2018 के एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाना हो या फिर देश का सर्वोच्च अर्जुन पुरस्कार जीतना। उन्होंने ट्रैक पर हमेशा तिरंगे का मान बढ़ाया।
1: लेकिन दोस्तों, उनकी कहानी में ट्विस्ट आया जब 2022 में उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। 32-34 की उम्र में तब लोगों ने यह मान लिया था कि उनका करियर जो है वो ख़त्म हो चुका है, तब भी पुवम्मा ने हार नहीं मानी।
0: उन्होंने रात दिन कड़ी मेहनत की और मैदान पर अपनी वापसी की। साल 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में भारत की रिले टीम का हिस्सा बनकर दुनिया को दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है।
1: उनकी ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम खुद पर भरोसा है तो लाइफ की हर रेस हम जीती जा सकती है।

0: दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कलाकार की जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बनाई। अपनी मेहनत, प्रतिभा, मल्टीपल कैरेक्टर्स के दम पर लाखों लोगों के दिल जीतने वाले एक्टर प्रोड्यूसर हैं ये मार्क वॉलबर्ग।
1: एज एन एक्टर उन्होंने कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन जैसी कैटेगरीज में काम किया और कई अवार्ड जीते। इनका जन्म आज ही के दिन बॉस्टन में हुआ था।
0: अपने कवर में उन्होंने 1990 के दशक में हिप हॉप ग्रुप मार्की मार्क एंड द फंकी बंच के मेंबर के रूप में उन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, जिसके साथ ही उन्होंने म्यूजिक फॉर द पीपल और यू गोटा बिलीव रिलीज किए।
1: अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1994 में आई फिल्म रेनेसा मैन से की उन्होंने और इसके बाद फियर में मेन रोल निभाया। 2000 के दशक के शुरुआत में कई बड़ी बजट फिल्मों में काम भी किया,
0: जैसे कि द परफेक्ट स्टॉर्म, प्लेनेट ऑफ द एप्स, द इटालियन जॉब। और क्राइम कैटेगरी की हम बात करें तो फिर द डिपार्टेड में उन्होंने बेस्ट हेल्पिंग एक्टर के रूप में अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।
1: द फाइटर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी उन्हें नामांकित किया गया। 2017 में वे दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर रहे।
0: और फिल्मों के अलावा उन्होंने 5 HBO सीरीज के साथ ही कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया है।
1: तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे जीनियस की जिन्होंने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया। ये है मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के पितामह जॉन मैनार्ड कीनीज।
0: इंग्लैंड में जन्मे कीनीज सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट नहीं थे बल्कि एक विजनरी भी थे। ईयर 1929 की महान मंदी यानी कि

0: अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया। ये है मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के पितामह जॉन मैनर्ड कीनीज़।
1: इंग्लैंड में जन्मे कीनीज़ सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट नहीं थे बल्कि एक विजनरी भी थे। ईयर 1929 की महान मंदी यानी कि ग्रेट डिप्रेशन के समय पे आपको याद दिलाती होगी कि जब पूरी दुनिया में नौकरियां ख़त्म हो रही थी तब और फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, उस दौर के पुराने एक्सपर्ट्स को मानना था कि मार्केट अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलने वाला है।
0: उन्होंने दुनिया को एक रिवॉल्यूशनरी विचार दिया। उन्होंने कहा कि जब मंदी आए तो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए और लोगों के लिए रोज़गार पैदा करना चाहिए ताकि लोगों की जेब में पैसा आए और बाज़ार फिर से दौड़ने लगे।
1: उनका यह विचार आगे चलकर कीनीसियन इकोनॉमिक्स कहलाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दुनिया की जो अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी।
0: उनका बहुत फेमस और मज़ेदार कोट है, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, जिसका मतलब था कि भविष्य की चिंता में आज की प्रॉब्लम्स को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों जरा सोचिए, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो भोजन खाते हैं, जिन नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं, यह सब हमें हमारे पर्यावरण से ही मिलता है। यानी कि एक तरह से यूँ कहें कि हमारे जीवन का आधार ही पर्यावरण है।
5: और इसी पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को अपने प्रकृति के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसका एहसास कराने के लिए हम हर साल आज ही के दिन यानी कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं।
4: दोस्तों यह दिन हमारे क्लाइमेट में हो रहे चेंजेस, बढ़ते पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी के नुकसान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। यह बताता है कि पर्यावरण के प्रति संरक्षण हमारे क्यों ज़रूरी है।
5: लोगों को वृक्षारोपण और जल संरक्षण के महत्व को बताता है, साथ ही स्वच्छता को अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। सरकारों, संस्थाओं, नागरिकों, स्कूल्स को मिलकर पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से ही प्रोत्साहित करता है।
4: साल 1972 में यूनाइटेड नेशन द्वारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
5: और ईयर 1973 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। और 2026 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो मेन सब्जेक्ट है वो है क्लाइमेट चेंजेस पर हो रहे ठोस कदम उठाने का। तो इसके बारे में जो थीम रखी गई है वो भी क्लाइमेट एक्शन रखी गई है।

0: कम से कम करना चाहिए। और स्वच्छता अभियान जो सरकार हमारी चला रही है तो उसमें भी हमें सहयोग करना चाहिए। और इसके बाद हम बात करें अगर कि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज की भी हमें रक्षा करनी चाहिए।
1: तो दोस्तों, साथ ही साथ हमें जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी लगातार शुरू से जागरूक रखना होगा और उन्हें भी इन सभी चीज़ों के बारे में बताना होगा ताकि वे भी आगे जाकर अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें।

0: आज ही के दिन मनाया गया था।
1: 1967 की अगर हम बात करें मानस, तो सिक्स डे वॉर की शुरुआत हुई थी जो कि इसराइल और अरब देशों के बीच लड़ा गया था। और 1947 की बात करें तो जॉर्ज मार्शल ने यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए प्रसिद्ध मार्शल योजना की घोषणा की थी।
0: इसके बाद 1981 में अमेरिका में पहली बार एड्स रोग के मामले को आधिकारिक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें आगे चलकर वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती का रूप लिया था।

दोस्तों, कार्यक्रम में आगे हम बात करते हैं आज के इतिहास की। और जैसा कि अभी हमने बात करी थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, तो दोस्तों आज ही के दिन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ था। इसी की याद में बाद में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। और अगर 1973 की बात करें तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस

0: तो दोस्तों अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। तो फुटबॉल फैंस का लंबा इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेज़बानी में फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से होने जा रहा है।
1: और दोस्तों आईपीएल 2026 के जो T20 क्रिकेट रहा था इसके बाद में अब टेस्ट की बारी आ चुकी है। 6 जून को न्यू चंडीगढ़ के मेज़बान में भारत और अफगानिस्तान के बीच में एकमात्र टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा, जो कि दोनों देशों के बीच में 8 साल के लंबे अंतराल के बीच में टेस्ट मैच होने वाला है।
0: तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज आपके साथ मैं थी निधि जैन और मेरे साथ हैं
1: मानस व्यास।
0: अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।

अभी आपने सुना युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से, वहां से सुनते हैं हिंदी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा।

0: असम मंत्री परिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। तो आपको सुनवाते हैं ये गाना कटी पतंग से, और इसे गाया है किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गाना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। फिल्म है तोहफा।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गाना वंश फिल्म से, और इसे गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने।

अभी आपने सुना वापस फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफ़र बस यहीं तक। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। वहाँ से सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर होगी जिले की चिट्ठी और फिर होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

समाचार। मुख्य समाचार। आरबीआई ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 5.25% पर यथावत रखा है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत बाहरी झटकों का न्यूनतम प्रभाव के साथ सामना करने की स्थिति में है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं। मौद्रिक नीति समिति आगे के फैसलों में आंकड़ों, आपूर्ति दबावों और आर्थिक घटनाक्रम पर नजर रखेगी। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों, भारत के प्रवासी नागरिकों और अन्य पात्र विदेशी निवेशकों के लिए इक्विटी बाजारों में निवेश के अवसरों को भी बढ़ाया है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इस पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और इस तरह की कमी को तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा परिसर में निर्वाचन अधिकारी भारत भूषण शर्मा के समक्ष उन्होंने नामांकन पेश किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। पार्टी ने श्री डांगी की उम्मीदवारी को सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव के प्रति विश्वास का

0: प्रतीक बताया है। उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह स्थान आर्द्र भूमि पक्षियों की विविधता से समृद्ध है, साथ ही कई तरह के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का आशियाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के साथ ही हरित भविष्य के लिए सहायक है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि को इकोलॉजिकल संरक्षण की दिशा में अहम बताया है। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों आवश्यक हैं।
1: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूँ, तीनों महत्वपूर्ण होती है। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है, और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं।
0: विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने और प्रकृति का संरक्षण करने की अपील की है। आज जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह में बोलते हुए श्री शर्मा ने सभी नागरिकों से पानी बिजली की बचत करने और राज्य को हरित तथा स्वच्छ बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस साल राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश भर में हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने के संदेश को लेकर कार्यक्रम रखे गए। अलवर में सशस्त्र सीमा बल की ओर से पौधरोपण और वितरण किया गया। हनुमानगढ़, डीग, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सवाईमाधोपुर सहित अन्य स्थानों पर विद्यार्थियों और आम लोगों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। भरतपुर में पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। झुंझुनू में पर्यावरण संरक्षण संबंधी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रतियोगिताएं रखी गईं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 3 दिन की देरी के बाद कल केरलम से मॉनसून का प्रवेश हुआ। इस बीच राज्य में भी प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। कल शाम से ही कई जिलों में आंधी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून के राजस्थान पहुंचने के आसार हैं। विभाग ने 7 जून तक कई हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। आज राज्य के 14 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट बताया गया है। मौसम में आए बदलाव से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, बीते 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में गरज और चमक के साथ तेज बरसात हुई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में 7.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू और राजधानी जयपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज अंधड़ से कुछ जगह हादसों की भी खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा में अंधड़ से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आज राजस्थान और पंजाब में 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की टीमों ने जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड और साइबर अपराध से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पकड़े गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधियों के तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। ईडी इन ठगों के वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से आज सोमनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत लगभग 1000 बुजुर्गों को रेल के जरिए सोमनाथ यात्रा पर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। मीडिया से बातचीत में देवस्थान

0: प्रधानमंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेट द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। उसी सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बीकानेर जिले के लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम लगभग पूरा हो गया है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का कायाकल्प कर यहां आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि स्टेशन के हाईटेक होने से पर्यटन, स्थानीय हस्तशिल्प और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो, और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है, जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
0: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने सोशल मीडिया पर

0: इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
1: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे फर्जी रेलवे भर्ती विज्ञापनों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मंडल ने इन विज्ञापनों को फर्जी बताते हुए कहा है कि इनके जरिए बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी के प्रयास किए जा सकते हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने कहा है कि भारतीय रेलवे सभी भर्तियां निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत करता है, निजी माध्यमों से चयन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। प्रदेश में इबोला वायरस का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। युगांडा से राजस्थान आई एक विदेशी महिला में इस बीमारी से मिलते जुलते लक्षण पाए जाने के बाद उसे जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिलाओं को विशेष आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। RUHS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि फिलहाल महिला में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। महिला का सैंपल जांच के लिए पुणे की प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। RBI ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देशभर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष गोयल ने तैयार किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज से ही हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। वन विभाग की ओर से आज लोगों को पौधे वितरित किए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी आज संपन्न हुआ। 25 मई को गंगा दशमी से शुरू हुए इस अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल स्रोतों की साफ सफाई के कार्य किए गए। अभियान के तहत 577 जल संरचनाओं की सफाई की गई, वहीं 37 की मरम्मत और पुनर्जीवन के काम शुरू किए गए। 237 ग्राम सभाओं सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। कोटपुतली नगर परिषद इन दिनों पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोक कल्याण मेले लगाया गया है। 30 जून तक चलने वाले इस मेले में अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी पटरी संचालकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही छोटे व्यवसाय करने वाले वेंडर्स को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में पुलिस की ओर से अवैध मोडिफाइड वाहनों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि इस दौरान वाहनों की बॉडी में परिवर्तन कर प्रेशन हॉर्न और अवैध रूप से लाल नीली बत्तियां लगाने तथा नंबर प्लेट में बदलाव करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने जिले में पड़ रही तेज गर्मी के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को पीने के पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने को कहा। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित लोगों के लिए विशेष प्रबंध करने को कहा गया है। जिला कलेक्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला स्तरीय महिला समाधान समिति, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और महिला सुरक्षा केंद्र की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। साथ ही जिला कलेक्टर ने नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बनाए गए जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की भी बैठक ली। पावटा में नया न्यायालय भवन बनाया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने नए भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 3 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत

0: आएगी। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के तहत मकानों का सर्वे और मकान गणना का काम लगातार जारी है। प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण और आवश्यक जानकारी का संकलन कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने नागरिकों से इस काम में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है। बीते दिनों राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्राम रथ अभियान चलाया गया। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई गई। साथ ही संध्या चौपाल लगाकर आम जन को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत इन दिनों जिले के मंदिरों, मठों और निजी संग्रहों में मौजूद प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, संरक्षण और डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मिशन के जिला नोडल अधिकारी ने बीते दिनों मिशन के लिए बनाई गई क्रियान्वयन समिति के साथ बैठक की। उन्होंने समिति के सदस्यों को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संग्रहालयों और पुस्तकालयों में जाकर पांडुलिपियों के सर्वेक्षण कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करने का आह्वान किया। उन्होंने इस काम को प्राथमिकता देते हुए डोर टू डोर सर्वे करने को कहा। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र तथा नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से बहरोड में एमएसएमई प्रोत्साहन जागरूकता कार्यशाला रखी गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को राज्य और केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। इससे पहले नीमराणा, घिलोट और शाहजहांपुर औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों को भी ऐसी कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक किया जा चुका है। इसके साथ ही कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किनो, 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश माए पौधा रोपण, वितरण और जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। हरियाली बधावन और आबो हवा ने बचावन रो संदेश दियो चियो। प्रदेश माए चौमासाओं पहली री हलचल शुरू हुई। कई जिला माए आंधी बारिश रो दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापा मारिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किन्नो है। मौद्रिक नीति समिति री समीक्षा बैठक में इनने 5.25% रा लेवल माथे राखण रो फैसलो करी चियो। मीटिंग में स्थायी जमा सुविधा री रेट 5% और सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक रेट 5.5% रा लेवल में थई राखण रो फैसलो करी चियो। चालू माली साल में लगातार दूजी दफा ब्याज री खास दरा में कोई बदलाव नहीं करी चियो। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा आ जानकारी दीनी। वे कहो कि बैंक चालू माली साल सारू सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी माय बढ़ोतरी री रेट पहली री 6.9% घटार 6.6% करण रो फैसलो किन्नो। आरबीआई अनिवासी भारतीयां, भारतरा प्रवासी नागरिकां और दूजा पात्र विदेशी निवेशकां सारू इक्विटी बाजार माय निवेश रा मौकाई बधाया है। सरकारी दूजा देशां रा संस्थागत निवेशकां ने सरकारी शेयरां माथे भेवण वाला पूंजीगत फायदा माथे टैक्स माय छूट दीनी है। देश माय पॉलीमर आधारित नोट चलावण रा प्रस्ताव माथे विचार करियो जा रियो है। भारतीय रिजर्व बैंक रा गवर्नर संजय मल्होत्रा बतायो कि देश रा न्यारा न्यारा हलकाओं बैंकां री शाखावां और एटीएम माय नोटां री कमी री शिकायतां मिली ही। श्री मल्होत्रा बतायो कि बैंक कने जरूरी तादाद माय नकदी मौजूद है और इनरी कमी तुरंत पूरी कर दी जावेला। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव रा तहत राज्यों 3 सीटा माथे वेवण वाला चुनाव बाबत कांग्रेस रा उम्मीदवार नीरज डांगी आज पर्चो दाखिल किन्नो। वह विधानसभा भवन में चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा सामी नाम पानो भरियो। ई बगत राज्य रा पहली वाला मुख्यमंत्री

0: अशोक गहलोत, विधानसभा माए विपखरा नेता टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा माए कांग्रेस रा मुख्य सचेतक रफीक खान समेत कई आला नेता मौजूद हा। कांग्रेस नीरज डांगी री उम्मीदवारी ने पार्टी रा सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव रा प्रति भरोसा री निशानी बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश माए बलिया राज जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल रे देश री 100वीं रामसर ठौड़ वेवन रा ऐलान माथे खुशी जताई है। माना संदेश माए श्री मोदी कहो के ओ जैव विविधता ने बचावण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखण सागे हरित भविष्य सारू मददगार है। सुरहा ताल माए भांत भांत रा प्रवासी और वठेरा परिंदा रो रहवास है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ई उपलब्धि ने पारिस्थितिकी बचावण ओड़ी खास बतायो है। वे कहो के पारिस्थितिकी संतुलन सारू वेटलैंड ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों जरूरी है।
1: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूं, तीनों महत्वपूर्ण होती हैं। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनताओं आबो हवा रे मुजब जीवन रो तरीको अपनावण और धरती ने बचावण री अरज कीनी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके जयपुर माए राखी जाए एक कार्यक्रम माए श्री शर्मा जनताओं पानी बिजली री बचत करण सागे राज्य ने हरित और साफ सुथरो बनावण माए योगदान देवण री अपील कीनी। मुख्यमंत्री कहो के एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तहत ई साल प्रदेश माए 10 करोड़ पौधा रोपणु तय करी चियो है। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखर राज्य माए हरियाली बधावण और कुदरत ने बचावण रो संदेश देता थका कार्यक्रम राखी चिया। अलवर माए सशस्त्र सीमा बल री ओरों पौधा रोपी चिया और जनता ने पौधा बांटी चिया। हनुमानगढ़, डीग, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सवाई माधोपुर समेत कई ठोड़ा विद्यार्थी और जनता पौधा रोपिया और पर्यावरण ने बचावण री सोगन लीनी। भरतपुर माए पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली जी। झुंझुनू माए पर्यावरण बचावण जुड़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम और होड़ा राखी जी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप माना एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। देश में चौमासारी बिरखा सरूफ एवं हालात अनुकूल है। केरलम में चौमासारी बिरखा 3 दिन मोड़ी सरूफी। राज्य में चौमासाओं पहले रही हलचल तेज वे की है। काल सिंजा हुई कई जिला में आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। मौसम विभाग रे मुजब आवता महीना रा पहला सप्ताह में राज्य में चौमासारी बिरखा सरूफ एवं आसार है। बीचे 7 जून ताई प्रदेश रा कई हलका माए आंधी बारिश री संभावना जताई ची है। आज राज्य रा 14 जिला माए ऑरेंज और 8 जिला माए येलो अलर्ट जारी करी चियो है। मौसम माए आया बदलाव तेज गर्मियों थोड़ी साता मिली है। हालांकि तेज अंधड़ रे कारण कठे कठे हादसा री खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा माए अंधड़ 2 जना री मौत वे की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी री ओरों आज राजस्थान और पंजाब माए साइबर अपराधा माए शामिल फेवन री शंका वाला रे खिलाफ 7 ठोड़ा छापा मारी चिया। ईडी री टीमा जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ माए एक सागे करी जी कार्रवाई रे दौरान मोटी तादाद माए मोबाइल फोन माए लगन वाली सिम और साइबर अपराध माए काम आवण री शंका वाला इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान पकड़िया।

0: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत करीब 1000 बुजुर्गों ने रेल रे जरिए सोमनाथ री यात्रा कराई जा रही है। इन सारू जयपुर कने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रेलगाड़ी ने हरी झंडी बतार रवाना कीनी। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत कहो के 6 दिन री ई यात्रा में यात्रुआ सारू सगला सुविधा मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेट द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। उसी की सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत बीकानेर कने लालगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावण रो करीब 85% काम पूरो वेक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। वे बतायो के लगभग 20 करोड़ रुपया रा खर्चो वठे नुआ सुविधा विकसित करी चिया है। श्री सुदर्शन बतायो के इन स्टेशन रे हाईटेक मेवणो सैर सपाटा वठेरा हाथरी कारीगरी रा काम और कारोबारी हलचल ने बधावो मिलन सागे, नौकरी धंधा रा मौका ही बधेला।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है, जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
0: पश्चिम मध्य रेलवे रो कोटा मंडल रेलवे माय भर्ती रा सोशल मीडिया माथा चाल रिया फर्जी विज्ञापनाओं सावचेत रहण री राय दीनी है। मंडल रा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन कहो के रेलवे माय सगली भर्तियां ते नियमा रा तहत साफ कोई सागे करी जावे है और गैर सरकारी जरिया चयन री कोई प्रक्रिया नहीं वह है। प्रदेश में इबोला वायरस री शंका वाला एक मरीज रीठा पड़िया पाछे स्वास्थ्य विभाग सावचेत वेक्यो है। अफ्रीकी देश युगांडा राजस्थान आई एक विदेशी महिला में ई बीमारी मिलता जुलता लक्षण रीठा पड़िया पाछे वाना जयपुर रा RUHS अस्पताल रा विशेष आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराई ची है। RUHS अस्पताल रा अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता बतायो कि फिलहाल ये महिला में इबोला संक्रमण री पुष्टि नहीं हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आज टोंक में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रा AEN और कंप्यूटर ऑपरेटर ने 20,000 रुपये री घूस लेता थका पकड़ लीना। ACB रा एडिशनल SP ऋषिकेश मीणा बतायो के पकड़ी जिया लोगा माथे शिकायत करण वाला रा घर रो बिजली रो मीटर पाछो देवण और विजिलेंस जांच रपट नी भरण री एवज माय आ रकम मांगण रो आरोप है। ACB कोटा विकास प्राधिकरण माय संविदा रा आधार लाग्योड़ा एक कर्मचारी ने 15,000 रुपया री घूस लेता थका पकड़ लीनो। वा माथे शिकायत करण वाला रा बाप दादा रा घर माय भागीदार लोगा ने लिस्ट माय नाम मांडण सारू घूस मांगण रो आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून ने विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी वेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। आखिर माय खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। RBI रेपो रेट माय कोई बदलाव नहीं कीनो, 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश माय पौधारोपण वितरण जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। प्रदेश में चौमासाओं पहली रही हलचल शुरू हुई, कई जिला में आंधी बारिश रो दौर जारी। प्रवर्तन निदेशालय साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर नागौर और किशनगढ़ में छापा मारिया। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी

0: राम राम अनीता भाई सा राम राम
1: राम राम पीमा भाई राम राम
0: खेती और घर कार्यक्रम सुनो वाला सगला किसान भाई ने अपनो
1: राम राम
0: सा देखो सा किसान भाई अपना कार्यक्रम भी टेम भी और माँ आया आपने घनी सारी जानकारी देवारे वास्ते तो खेती बाड़ी संबंधी जानकारी देवा मौसम संबंधी जानकारी देवा सरकारी योजना अपना वास्ते कई चली रही अंडी जानकारी देवा और लारे लारे काम काज री बात अपना जीवन में कई वे सके ये सब जानकारी लेने आया हाँ तो अनीता भाई सा आप ही बेटा हाँ चौपाल रा महीने और चौपाल रा महीना आज जानकारी दे रहे हैं कृषि और पर्यावरण को संबंध आपस में कई व्या करे
1: बिल्कुल सा देखो खेतीबाड़ी और पर्यावरण की अगर आप बात करा तो देखो जो संबंध है एक सिक्का रा दो पहलू जिस तरह वे है कि दो एक दूसरा पर पूरी तरह निर्भर भी वे है सा और एक दूसरा री गहरे ने प्रभावित भी कर है और अगर आप बात करा कि पर्यावरण स्वस्थ है खेती अच्छी वे खेती रा तरीका सही वे तो पर्यावरण ने सुरक्षित रखना अपने बहुत जरूरी वे है सा यदि अपना पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो देखो अपनी खेतीबाड़ी भी हाउ तरह उपजेगा सा
0: सही कह रहा हो सर देखो पर्यावरण और खेती जो है अणा में आप में जो संबंध व्याकर है अण में दो मुख्य भाग में आप ही बांटी सका अण में देखो पहली बात तो यह है कि पर्यावरण को कृषि पे कई प्रभाव पड़ा करे और खेती अपना पूरी तरह जो प्राकृतिक संसाधन है जो और मौसम चक्र है वणिक ऊपर टिकी लगी है तो अपने मिट्टी की सेहत री बात करें तो देखो मिट्टी का महीने मौजूद जो सूक्ष्म जीव व्या करे केंचुआ व्या करे जीव ऑर्गेनिक व्या करे जीवांश व्या करे तो अणा ने तोड़ने जो अपना पौधा जो है वणा ने जो पोषक तत्व में बनाव काम करे है और स्वस्थ जो मिट्टी है वण में अच्छी फसल अपना का आधार पर निर्भर करें करे और दूसरी बात यह है कि मौसम और जलवायु तो अपना सही समय पे सही टाइम पे आप जो वर्कर की टाइम वो बोली सही तापमान वो तावड़ो निकले तो अपना फसल ने पाकवार वास्ते जो जरूरी व्या करे और जलवायु परिवर्तन जो व्या करे वण का कारण जो अपना मौसम को चक्र बिगड़तो दिखो रहे बनतो दिखो रहे इको सीधो असर जो है अपना फसल की पैदावार पे पड़े सा
1: बिल्कुल सही बात की सा और अन्य तरह कर आप प्राकृतिक परागण री बात करा देखो मधुमक्खियां हैं तितलियां हैं जितना भी अन्य कीट है वे फसला में परागण रो काम करे है सा अंडे बना पाने जो फल है वनो अनाज रो वनो असंभव भी वे सा और हाथे हाथे अगर आप कृषि रा पर्यावरण री बात करा तो देखो कृषि पर्यावरण पर प्रभारी तो आप जनित रो खेती करा वनर अपनो पर्यावरण रो जो सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह रो असर वणी पे पड़े है सा
0: सही कह रहा हो सा देखो मिट्टी और पानी में जो प्रदूषण की बात करा तो अत्यधिक रसायन की वजह जो है जो खाद है या फिर और भी कीटनाशक है वणा को इस्तेमाल आप करा तो जो मिट्टी है वणी का महीने प्राकृतिक उपज जो है वण की क्षमता है वण की उपजाऊ क्षमता है यह सब प्रभावित हुए और देखो रसायन बैन जो है अपना भूमिगत जल में पहुंचे अपना तालाब में तलाय में में पहुंचे तो वो भी देखो प्रदूषण रो काम करे सा
1: बिल्कुल सा और हाथ भूजल रो संकट री बात करा देखो धान जैसी फसल में भी जरूरत हूँ ज्यादा पानी रे इस्तेमाल हो जमीन रा जा नीचे वाला पानी है वो तेजू कम वे तो जावे है सा और देखो सकारात्मक प्रभाव री बात करा तो अपने जा खेतीबाड़ी है अगर वही खेतीबाड़ी में वैज्ञानिक और प्राकृतिक
0: करे वणी का कारण जो अपना मौसम को चक्र बिगड़तो दिखो रहे बनतो दिखो रहे इको सीधो असर जो है अपना फसल की पैदावार पे पड़े सा
1: बिल्कुल सही बात की सा और अन्य तरह कर आप प्राकृतिक परागण री बात करा देखो मधुमक्खियां हैं तितली है जितना भी अन्य कीट है वे फसला में परागण रो काम करे है सा अंडे बना पाने जो फल है वनो अनाज रो वनो असंभव भी वे सा और हाथे हाथे अगर आप कृषि रा पर्यावरण री बात करा तो देखो

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो अनिता भाई सा राजस्थानी गीत सुनाया सा कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और अपना किसान भाई ने मौसम संबंधी जानकारी देवा सा।
3: बिल्कुल सा।
2: तो देखो सा मौसम विज्ञान विभाग जयपुर मलिल की सूचना रे आधार पर किया कि आवा वाला दना में जो है 3-10 मिलीमीटर बारिश जो वेवा की संभावना वत मिली है।
3: हाँ,
2: हवारी गति जो है वह 1-3 किलोमीटर प्रति घंटा रा वेगू दक्षिण पश्चिम दिशाओं चालवा की संभावना है। अधिकतम तापमान 35-40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री रही सके। सापेक्ष आर्द्रता की बात करा तो न्यूनतम 48-58% और अधिकतम जो है 19-28% तक रही सके सा।
3: बिल्कुल सा। और देखो आवा वाला दना में खेती बाड़ी वाला ने भी सलाह दा अपने किसान पहने की जो खेती बाड़ी री बात होता वहाँ तो मैं सामान्य जानकारी देवा कि जो मिट्टी री जो नमी है विने वणाई रखवार वास्ते अपने पंक्तियों रे वच में सूखी घास है या पचल रे फसल रा जितना भी अवशेष है उनका उपयोग अपने अवश्य कर लेनो चाहे सा।
2: सही कह रहे हो सर। अपना घना हारा किसान भाई जो है आम रा बगीचा लगावे।
3: हाँ
2: सर। तो वहाँ के आम का पौधा जो है अपने वणी में पानी की जरूरत के हिसाब अपने पाणत करनी चाहे।
3: बिल्कुल सर।
2: आम का पेड़ जो है वहाँ में होपर मतलब की कीड़ा के जो नियंत्रण रा वास्ते अपने मेलाथियान 50 EC को छिड़काव अपने 1-25 लीटर जो है पानी रा महीने अपने मिलाई ने 1 मिलीलीटर जो की दरों अपने करना चाहे।
3: ठीक है सर।
2: और मालफोमस जो मतलब विकृत जो प्रभावित टहनिया है अपने पेड़ की तो वन अपने तोड़ देनी चाहे डालिया ने हटाई देनी चाहे। और जना आमरा पौधा रा ऊपर फल या पचे फूल गिरवा की समस्या वे तो वनी जगह पे अपने 15 लीटर पानी रा महीने 4 मिलीलीटर

0: फ्लाइनोफिक्स मिलाइन जो आपने छिड़काव करना चाहे सा।
1: बिल्कुल सा। और अणी तरह अगर आप मूंगरी बात करा तो देखो मूंगरी फसल में भी आपने पीत शिरा मोजेक रोग भी जावे अंडे रोकथाम वास्ते भी आपने ध्यान रखना है कि डाइमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाइन पचे अंडे आपने छिड़काव कर देना चाहे सा ताकि यो जो रोग है यो रोग अटिस खत्म हो जावे सा।
0: कपास री खेती अपना किसान भाई करे तो वणा ने कहवा कि देरियो बोई लकी अपने फसल जो है वण की तुलना में अधिक उपज लेवारा वास्ते अपने कपास की टेम पे बोई शुरू कर देनी चाहिए। उन्नत किस्म जो बताई मिली वन में देखो अंकुर 32-24 जन बीजी द्वितीय भी केवे हाँ और PCH 96.05 ये किस्म आप ही काम में लेना चाहवा। बीटी कपास की खेत्र महीने अपना चारों मेर जो अपना गेर बीटी कपास जो है वह बोनी चाहवा। बुआई का बाद में अपने पेंडी मिथालिन 30 EC 1 लीटर पानी महीने 500 लीटर जो है उनको गोल मिलान छिड़काव करना चाहवा।
1: ठीक है सा। और अनितरों अगर आप बेल वाली जो सब्जियां हैं वनरी भी अगर आप बात करा तो देखो कुशमांड कुल्डी जितनी भी सब्जियां हैं वणी में लाल ब्रिंग कीट अंकुरित व नई पत्तियां ने खाई फसल ने हानि पहुंचावे ऐसा तो अंडी रोकथाम वास्ते भी अपने किसान मैंने ध्यान रखना चाहिए सर। तो अंडे कई करना है कि कार्बेरिल 5% चूर्ण बनाई 25 किलो प्रति हेक्टर की दरों अपने सुबह या पे हांजे टाइम पे अपने पे बुरकाव कर देना चाहिए सर।
0: जायद की मूंगफली आपने जो किसान भाई बोई रखी है या तैयारी कर मिली है तो वहां आप खरपतवार का प्रकोप ने नियंत्रण वास्ते अपने उचित पेंगिंग का वास्ते इंटरकल्चर का ऑपरेशन अपने करना पड़ेगा। हाथ देखो अपने घुड़ाई करवा की भी जरूरत अड़ में पड़ेगा तो यो काम अपने ध्यान रखना करना है सर।
1: ठीक है सर। और भिंडीरी अगर आप बात करा तो भिंडीरी जो खेत में खरपतवार नियंत्रण वास्ते भी अपने घुड़ाई टाइम पे करनी चाहिए सर। निराई भी अपने टाइम पे कर लेनी चाहिए सर। यह सलाह आप अपने किसान भाई ने देवा सर। और हाथे हाथे जना खेत में जायत्री भिंडी है शेलो वेन मोजेक है तो अनार वास्ते अपने कई करना चाहे सर कि अणी वायरस के लक्षण अगर अपने दिखाई जाए तो वटे अपने फूल आव पहले से अपने बाद में डाइमिथोएट 30 मिलीलीटर अपने 1 लीटर पानी में मिले मैंने दरू अपना पे छिड़काव कर देना चाहे सा।
0: सही कह रहा हूँ सा। गर्मी री टेम चल रही तो अणी टेम पे कही है कि अपना हरा चारा की कमी वे वो एक आम बात है।
1: हाँ सर।
0: स्थिति में कही है कि अपना हरा चारा की फसल है वे जो व्याकरण में ज्वार है बाजरा है मक्का है लोबिया है अणा की बुआई करनी चाहे ताकि कहीं हरा चारा की पूर्ति करी सका।
1: बिल्कुल सर। देखो यह तो सामान्य खेती बाड़ी रिवाज होता है और अभी देखो अपना पशु है जो अणबुलिया जीव है वनडे बारा में भी अपना पेमा भाई अपने किसान भाई ने बताओ वहाँ की गर्मी खूब हरी पड़ी रही है तो अपने किसान भाई ने चाहे कि अपने पशुओं ने भी टेम टेम पे कम से कम दिन में 2 या 3 बार पानी अवश्य पिलावे सा। खावारो भी पूरो ध्यान रखे वहाँ हरो चारो अवश्य देवे सा। वहाँ रेहवारी जो व्यवस्था है वटे भी पूरो ध्यान रखे कि वे कटे तावड़े नहीं बली जावे खुली हवा में वहाँ ने रखे और हाथे हाथे छायादार जटे जगह वे वटे अपने पशुओं ने बांधना चाहे सा।
0: सही कह रहा हूँ सर। देखो पशुओं का लारे लारे कई बदलता दिखा मौसम में अपना किसान भाई ने खुदरा शरीर को भी पूरा
1: बिल्कुल सा।
0: हाँ सर। और जो देखो अब वर्का छाटा टेम जो आई रही है तो वी हिसाब कही कि अपना मौसम में बहुत सावधानी रखवारी जरूरत पड़े है।
1: हाँ
0: आप ही खेते बाड़े जावा आठनो खेत रो काम करा डांडा चोपारो काम करा तो वी टेम पे अपना कही मौसम देख काम करना चाहे
1: बिल्कुल सर।
0: ताकि कई का कटिन जगह कही की बिजलियां चमकवा की टेम वे या पचा कही गड़ा पड़वारी भी स्थिति बहुत पड़ी रही है तो वन में कही अपने शरीर पे मारनी पड़े आप ही बिजली पड़वा की जो घटना व्या करे वी का आप शिकार नहीं व्यवा तो ये सावधानी अपने रखनी चाहे। और लारे लारे कही के मौसम को देखता दिखे अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखा तो आप कड़ी हारी जो है बीमारियों में आप वंचित दिखा रह सका। तो अपना किसान भाई ने कहवा कि अपना बदलता दिखा मौसम में खुदरो भी ध्यान रख जो अपना डांडा चौपा को भी ध्यान रख जो और खेती बाड़ी को काम जो है वो टेम टेम पे कर जो ताकि सब कुछ काम सही रहे।
1: बिल्कुल सर। तो देखो या तो इतनी बड़ी आप जानकारी अपने किसान भाई ने दी सा और अभी को तो अपने किसान भाई ने एक और बड़े राजस्थानी लोग सुना सा।
0: हाँ सर सुना गीत।

0: તો પીમા ભાઈ યો બઢિયા રાજસ્થાની લોકગીત આપ આપણે કિસાન ભાઈને સુણાયો સા કાર્યક્રમને આગે બનાવવા સા
1: હા સા
0: ઓર જાણકારી દેવા સા યોજના રે બારામાં સા તો દેખો જા અસા પરંપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના હે યા યોજના કઈ વે વેસા અંડો કઈ ઉદ્દેશ વે સકે હે ઓર અંડા કઈ કઈ લાભ આપણે કિસાન ભાઈ લઈ સકે અન્ય જાણકારી આપા દેવા સા
1: સહી કહે રહ્યા સા દેખો પરંપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના જો હે આપણા કેન્દ્ર સરકાર કી એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ઓર મહત્વાકાંક્ષી યોજના હે और अनेकों मुख्य उद्देश्य जो है वो रासायनिक खाद कीटनाशक वन की निर्भरता ने कम करना है
0: हाँ।
1: अपना देश में जैविक खेती अन्न बढ़ावा देना है और यह योजना देखो अपना सोइल हेल्थ कार्ड इसकी मतलब अपने मृदा जो हेल्थ कार्ड व्या करे अणिका
0: हाँ।
1: ऊपर निर्भर करे और एक अणिको उप घटक नाम की यह योजना है सा
0: बिल्कुल सा और योजना का मुख्य उद्देश्य अगर आप बात करा तो देखो अणि योजना रे शुरुआती किसान री जे आए है विने बढ़ावा रे वास्ते मिट्टी री सेहत सुधारवा रे वास्ते और पर्यावरण ने रसायन वे जणो दुष्प्रभाव बचावा रे वास्ते की दी तकी है सा तो जो प्रमुख अगर आप उद्देश्य री बात करा तो देखो मिट्टी रो जो स्वास्थ्य है अणि में सुधार कणी तरह आई सके है तो देखो लगातार रासायनिक खादा रो जो उपयोग है वो मिट्टी ઉપજાઉને ક્ષમતા વે વિને કમ કરે હે સા ઓર દેખો આની યોજના રે તહત જૈવિક કાર્બન ને બડાવો દેન મિટ્ટી પાછી વણે જીવિત બનાવવા મે કામ કરે હે સા
1: દૂસરી વાત યા હે કે લાગત મે કમી કરની આપના કિસાન ભાઈ દેખો ખેતારા મહિને કચરો હે ગોબર હે સ્થાનીય સંસાધન જો હે વણ્યું જો હે આપણે ખુદ ખાદ બનાવી દે और जान की देखो अपना वर्मी कंपोस्ट है जीवामृत है अणु वणाता दिखा जो काम करे है जणियों कही है कि बाजार में महंगी खाद और दवाएं जो है वणे खरीदवा की जरूरत नहीं पड़े है
0: बिल्कुल सही बात की दिशा और अगर आप बात करा कि गुणवत्तापूर्ण जो भोजन तो रसायन मुक्त वे वे शुद्ध और पौष्टिक अनाज वे वे फल और सब्जियां जो उत्पादन है वणि में वे वे है सा जणियों कही वेगा कि जन स्वास्थ्य बेहतर वेगा सा आपा कही सका अणि में पूरी गुणवत्ता वे वे है सा
1: किसान भाई की आय में बढ़ोतरी की बात करा तो देखो जैविक उत्पाद व्यां करे वन में बाजार में देखो विशेषकर शहर और विदेश में जो है अणि की मांग बहुत ही ज्यादा रहे वह है और सही मार्केटिंग को तरीको व्यां करे और अपना किसान भाई वन की उत्पादन ने बेहतर तरीकों जो है देख सके तो देखो आने का प्रीमियम दाम जो है वह बहुत ही अच्छा मिल सके सा
0: बिल्कुल सा और अगर अपन ने कार्य प्रणाली की बात करा तो देखो क्लस्टर दृष्टिकोण जिन्हें कि आप कह सका हाँ कि अणि योजना ने व्यक्तिगत स्तर के बजाय आप इन्हें एक समूह में अगर आप समूह दृष्टिकोण देखेंगा तो ये समूह दृष्टिकोण काम करेगा सा ताकि बड़ा पैमाना पर खेती जो प्रमाणन वे बिना आसान भी बढ़ाया जा सके है सा
1: अब समूह की बात जो आप कर रहे हो तो देखो 50 अधिक किसान भाई जो है वो समूह बनाई सके
0: अणि
1: योजना महीने न्यूनतम 50 किसान जो मिलन एक क्लस्टर बनाई सके और देखो भूमि संबंधी जो है एक दायरा की बात करें तो एक क्लस्टर के न के जो अपना कुल बिलाई ने जो अपना कम 50 एकड़ जमीन लगभग 20 हेक्टर जमीन व्यां करे तो वह कृषि भूमि वेणी चावे सा
0: बिल्कुल सर लक्षित क्षेत्र री अगर आप बात करा तो देखो जिस तरह की पहाड़ी है आदिवासी है या वर्का आधारित जटे भी क्षेत्र है इन्हें सब पहला प्राथमिकता दी जावे क्योंकि वटे रसायन उपयोग पलह कम वे वैसा और जैविक खेती की संभावना आने में अधिक बढ़ती जावे ऐसा
1: वित्तीय सहायता और बजट का आवंटन की बात करें तो सरकारी योजना रे महीने देखो अपना किसान भाई ने सीधा वहां का बैंक खाता रे महीने और क्लस्टर प्रबंधन के महीने देखो वित्तीय मदद दी जा सके प्रति हेक्टर सहायता की बात करें तो सरकार की तरफ प्रति हेक्टर कुल 50,000 रुपया जो वित्तीय सहायता है 3 साल रे वास्ते दी जावे और किसान भाई ने सीधे लाभ की बात करें तो कुल राशि जो है 31,000 रुपया व सीधा किसान भाई के जैविक इनपुट जान के अपना जैविक बीज जैव उर्वरक है जैविक कीटनाशक है कंपोस्ट यूनिट है अंडा वास्ते जो है दी जा सके सा
0: बिल्कुल सा और बाजार और पैकेजिंग री अगर आप बात करा तो बाकी जितनी भी बची तकी राशि है वनडो उपयोग अपने क्लस्टर गठन किसान और प्रशिक्षण या पचे जैविक उत्पाद ब्रांडिंग पैकेजिंग लेबलिंग और जितना भी नजदीकी बाजार

0: मटर तक पहुंचाने वास्ते एक अड़मी की दी जावे ऐसा।
1: और जैविक उत्पाद ने बाजार रमाइने असली जैविक के रूप में भी बेच वाला वास्ते देखो सर्टिफिकेशन मतलब एक प्रमाण पत्र जो व्या करे वो बहुत ही जरूरी व्या करे। और PKVY मतलब प्रधानमंत्री किसान विकास योजना जो है अणी के वास्ते देखो बहुत ही ज्यादा सरल और मुफ्त प्रणाली इनमें उपयोग में ली जा सके तो अणी तरह किसान भाई को लाभ ले सके।
0: बिल्कुल सही बात की दिशा। और अगर आप पर्यावरण और जल संरक्षण री अगर आप बात करें तो देखो जैविक खेती रे मैंने मिट्टी रो जो जल धारण क्षमता है वह भी बढ़े है। चने को वेगा के सिंचाई में पानी री जो बचत वेगा साथ ही भूजल रसायनी दिशा वो प्रदूषित हवा में भी बचतो जावेगा सा। तो देखो सा सहभागिता आधारित री अगर आप बात करें तो अणी में महंगा और तीसरी पक्ष जांचकर्ता ने भी जरूरत नहीं वैसा क्योंकि क्लस्टर के किसान ही आपस में एक दूसरे की खेती की निगरानी कर रहे हैं सा और कोई रासायनिक दवा भी अणमी नहीं डाले हैं सा।
1: पारदर्शिता और भरोसा की बात करना तो पूरी तरह जो है पीयर रिव्यू मतलब कि समान स्तर पर लोग जो है यानी कि समीक्षा वही सके यो काम भी अणी पर आधारित व्या करे। और जणियों की है कि छोटा और सीमांत किसान जो है वणाना बेहद सस्ती और सुलभ सुविधा मिल सके सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो प्रमाणित व्यवहार बाद किसान ने उत्पाद पर PGS या ऑर्गेनिक ने तक राखे है सा चणियों को वेगा की उपभोक्ता और भरोसेवाणी में बढ़तो जावेगा सा।
1: योजना रे महीने दीर्घकालिक लाभ की बात करना महत्व की बात करना तो देखो पर्यावरण और जल संरक्षण समूह पहलो बिंदु आया करे। जणियों को यह है कि जैविक खेती रे महीने मिट्टी की जल धारण क्षमता है वर्णे बढ़ावनी है पाणत की जो पानी मापी है वन को बचत करनी है और लारे लारे भूल जल है वन्ने रसायन को रिसाव जो व्या करे वन को प्रदूषण बचावनो है।
0: बिल्कुल सही बात की दिशा। और देखो पेमा भाई रासायनिक खाद नी बनारे वास्ते फिक्टिया रो जो कार्बन उत्सर्जन है वो भी कम वे तो जाएगा सा। और जैविक मिट्टी जो वायुमंडल अधिक उपज है वह अधिक कार्बन सोखरी जो क्षमता है वह भी बढ़ती जाएगा सा।
1: और अपना किसान भाई अगर खेत ऊपर जो है जो काम करे तो उनमें देखो कि केंचो वाली खाद है या पचानी तरह की चीजें जो है वे बहुत ही ज्यादा लाभकारी भेजा हुआ है। और अपने बाहरी कंपनियां है बाहर का बाजार है वहां में उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं व्या करे और किसान भाई जो है वन की एक रूपता वन की आमदनी में वणी दिखी रहे।
0: बिल्कुल सा। और परंपरागत कृषि विकास योजना केवल आप बात करें तो फसल उगावा और तरीकों बदलवा के बारे में नहीं बल्कि यो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मजबूत करे ऐसा और पर्यावरण ने भी बचावे ऐसा और देश का नागरिक ने जहर मुक्त भोजन देवा में भी एक बड़ो आंदोलन है ऐसा।
1: यह तो भी जानकारी सा कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और एक और राजस्थानी गीत सुनावा सा।
0: हाँ सर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो अनीता भाई से आप ही सुनाए राजस्थानी गीत और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और जानकारी देवा कि खेतरा किनारा पे आप ही जो वृक्षारोपण करा आप ही पौधा लगावा हाँ तो आने को कई फायदे रहे और आने को कई उपयोग रहे यह जानकारी देवा सर।
3: बिल्कुल सही बात करी सर। देखो खेतरी किनारे पे या पछे मेड़ पर आप जे भी पेड़ लगावा जिन्हें आप मेड़ बंदी वृक्षारोपण कह सका हाँ सा जमीन का सही उपयोग करी वहाँ ने अतिरिक्त कमाई करवा सो एक बहुत ही बढ़िया तरीको भी वैसा अनु कही वेगा कि जो अपनी फसल है इन्हें नुकसान पहुँचाए बिना खेतरी सुरक्षा भी रहेगा मिट्टी की सेहत है वह भी उनमें सुधार बने तक रहेगा सा।
2: सही कह रहा सर। अब खेतरा ऊपर जो अपनी किनारा रहा ऊपर वृक्षारोपण करा वहाँ को सही तरीको और कई लाभ व्या करें ये जानकारी देवा। तो बात यह है कि अपना खेत में किनारा के ऊपर जो वृक्षारोपण आप ही करा हाँ, हाँ। तो उनको सही तरीको यो है कि खेत का किनारा पे जो लगाए देखा पेड़ है वे की टेम टेम पे जरूरत जो है वह अपन पड़े है और वे की आप ही काम में ले सका सही दिशा को चुनाव अपने करना चाहवे।
3: ठीक है सर।
2: अब पेड़ आप ही हमेशा कही करा कि खेत के उत्तर दक्षिण की तरफ जो अपने लगाना चाहवे मेड़ रहा ऊपर तो यो काम अपने करना चाहवे अणी कही है कि देखो पेड़ पे की जो छाया है वह सुबह शाम के टाइम पे वक्त पर अपना खेत बाढ़ पड़ी दिखी रहे और मेड़ पे जो रेवे तो अणि वजह की है कि अपना मुख्य फसल जो है खेतरा महीने विका ऊपर जो है।

0: ना करना चाहवे। आणि कही है कि देखो पेड़ पे की जो छाया है वह सुबह शाम के टाइम पे वक्त पे अपना खेत रा बाणे पड़ी दिखी रहे और मेड़ पे जो रहे तो अणि वजह कही है कि अपना मुख्य फसल जो है खेत रा महीने विका ऊपर जो है धूप बराबर रहे। वणियों कही है कि अपना पूर्व पश्चिम दिशा के महीने पेड़ लगावा में यो काम जो वही से बगड़ सके और अपना जो फसल है वह छायाओं प्रभावित वही सके।
1: बिल्कुल सा। और देखो हाथ हाथ अपने दूरी रो भी पूरा ध्यान रखो ऐसा कि जो भी पेड़ आप लगे रहा तो दूरी पूरी बराबर वेणी चाहे सा मेड़ू कम कम आप बात करा तो एक लगे 1.5 मीटर महीने हटी ने अपना गड्ढा खोद लेना चाहे सा और दो पेड़ा बीच में अपने प्रजाति हिसाब अपने 3 लगे 5 मीटर की दूरी अपने पूरी रखनी चाहे सा।
0: अब पेड़ा की छटाई की बात करना तो देखो पेड़ा का नीचे जो अपने टहनिया है वे टेम टेम पे अपन हटाते रहना चाहवा की छटाई जो है अपन करता रहना चाहवा और पेड़ सीधा ऊपर की ओर पे बढ़ता रहे और वहां की लकड़ी जो है वह मजबूत वेती जावे खेत महीने छाया कम पड़े यो काम अपने ध्यान रखना पड़ेगा।
1: और देखो अलावा जड़ रो जो प्रबंधन है वनो भी अपने पूरा ध्यान रखना की पेड़ की जड़ा है खेत में ज्यादा दूर तक नहीं फैले। अंडे वास्ते अपने कई करना है कि पेड़ रा लगभग 1 लगे 2 फीट की दूरी पर खेत की तरह एक गहरी नाली खोदिन रखनी चाहे सा। अणि कही है कि जो पेड़ा की जी जड़ा है वे गहरी महीने जाती रहेगा और फसल रे हिस्सा रो पानी जो है पोषण भी खत्म करेगा सा।
0: अब देखो सा अपना पेड़ को चयन करवा को भी ध्यान रखना पड़ेगा। पेड़ जो आप चुना हाथ वन में गहरी वेती जावे जो छाया है वन को ध्यान रखना पड़ेगा। पतझड़ है वी को ध्यान रखना पड़ेगा। इमारती लकड़ी है और व्यापार का वास्ते जो उपयोगी यहाँ करे वन में सागवान है मालाबार है नीम है सफेदो है ये जो है अणा को भी अपन देखना पड़ेगा। बबूल है तो यहाँ को भी आप ध्यान रखना पड़ेगा सर।
1: बिल्कुल सर। और अतिरिक्त आयरी अगर आप बात करा तो देखो सहजन जिन्हें आप मुनगा के वहाँ करंज है नीम है महुआ है अणारो भी अपने पूरा ध्यान रखना चाहे सा।
0: सही कह रहे हो सर। अतिरिक्त और सुरक्षित आमदनी की बात करना तो देखो फसल कभी अपना सूखा तो कभी पालक की चपेट में आई जावे खराब हो जावे लेकिन पेड़ है वह सुरक्षित रहे है।
1: तो
0: 5-10 साल तक बाद भी जो देखो अपना पेड़ है वहाँ की लकड़ी है वह बिकाऊ बेच सके अपना किसान भाई के एक लारे जो अधिक आमदनी को काम बेच सके जो वहाँ के अपना देखो कि घर परिवार में कहीं काम काज पड़ जाए तो वही टाइम पे वह पैसा अपने काम आई सके।
1: बिल्कुल सही बात की दिशा। और अंडेला देखो बाढ़ ने कम भी करे यानी कि आप बाढ़ की सुरक्षा भी अणु बेच सके हैं कि गन्ना पेड़ वेगा तो देखो खेत रो एक प्राकृतिक दीवार रो काम करे हैं ऐसा तेज हवा आ रही है आंधी आ रही है रफ्तारू आ रही है तो देखो अणि टाइम पे भी अपना जो पेड़ है ये बहुत ही लाभदायक बेच सके ऐसा जनु कही वेगा कि अपनी जो मुख्य फसल है वह गिरवाऊ भी बची सके ऐसा और हाथी हाथी अपना जितना भी आवारा पशु है वे भी खेत में आसानी महीने नहीं घुसी सके ऐसा।
0: और पेड़ की जड़ा जो है वह अपने मेड़ की मिट्टी ने मजबूती देवर काम करे वरना जकड़न रखे जणियों की है कि वर्कारी टाइम पे और तेज हवा के टाइम पे जो है मृदा अपवर्धन मतलब मिट्टी को कटाव जो व्या करे वणी में रोकवा में सफलता मिले सा।
1: और हाथी हाथी पेड़ पर जब मेड़ है वणी पर पेड़ वेगा तो देखो जो खेतरी जा हवा है वणी में नमी भी वणी रखी रहेगा सा। गर्मी रे दिना में तेज धूप खेतरा जो पानी है जल्दी भाप वणी नहीं उड़ेगा सा जणियों कोई वेखा की फसल ने कम सिंचाई जरूरत भी पड़ेगा सा।
0: और देखो सा अपना पेड़ का ऊपर जो पक्षी है वे भी बसेरो बना हुआ है मित्र कीट है वे भी आइन बैठे है तो अणियों कही है कि अपना पक्षी अपना खेत र महीने फसल ने नुकसान नहीं पहुंचावेगा और हानिकारक कीट है जो है वे भी देखो फसल तक नहीं पहुंचेगा। वणियों कही है कि ये पेड़ जो है अपना फसल ने बचाओ और काम करे सा।
1: हाँ सा। और देखो अगर आप नीम है करंज है या जो बबूल जैसा पेड़ लगाऊंगा तो अणारी जो पत्तियां हैं यदि सड़ी जाएगा तो वे मिट्टी ने नाइट्रोजन है जैविक कार्बन है वे अणुवाणा ने मिलेगा जणियों कही वेगा कि अपनी जो खेती है वह उपजाऊ भी बनी रहेगा और उनकी जो उपजाऊपन है उनकी क्षमता भी बढ़ती जाएगा सर।
0: अपना किसान भाई ने चाहे कि आप खेत मेड़ का ऊपर जो है पेड़ पौधा बराबर लगातार बस दिशा को अपने ध्यान रखना पेड़ को चयन को अपने ध्यान रखना है तो ये सब लाभ वेगा तो अपने खेत में फसल के अलावा भी जो है अपना आमदनी वही सके सा।
1: बिल्कुल सा। अगर ये छोटी छोटी बात रो ध्यान रखेगा तो देखो अपने किसान भाई ने बहुत ही लाभ मिल सके है सा। और पेमा भाई अभी को तो अपने किसान भाई ने एक राजस्थानी लोकगीत सुने था सा।
0: हाँ सा सुना है गीत।

0: तो पेमा भाई यो बढ़िया राजस्थानी लोकगीत अपने किसान भाई ने सुनाया सा और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा सा।
1: हाँ सा,
0: और देखो आज कई दिवस है अंड बारा में अपने किसान भाई ने जानकारी देवा। हाँ सा,
1: सही कह रहा हूँ सा। देखो आज को दिन है विश्व पर्यावरण दिवस। अब यो दिवस आप क्यों मनाई रहा हाँ आने दिवस को महत्व कही है पर्यावरण वास्ते अपना कई योगदान देना चाहे अपना वास्ते कई लाभकारी वे सके यह सब जानकारी देवा सा।
0: बिल्कुल सही बात की सा। देखो यो दिन अपने सभी ने याद दिलावा है कि अपनी जो धरती है अपनो इकलो तो घर है सा और अंडी सुरक्षा ही अपनी जिम्मेदारी वे वह सा। तो आप कहीं तरह अंडी सुरक्षा कर सका अंडे बारा में आप बतावांगा सा।
1: देखो सा हर साल जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ पर्यावरण ने वंचावारा वास्ते एक खास जो है विषय का ऊपर ध्यान में रखते दिखाई जो है पर्यावरण दिवस मनाया जावे सा। और अणि दिवस ने आप देखते दिखाई जो आप पर्यावरण जुड़ी दिखी जो आप बात करा हाँ पर्यावरण जुड़ी दिखी जानकारी देवा और लारे लारे जो है घना हारा कार्यक्रम करा सा।
0: बिल्कुल सर, देखो पर्यावरण ने बचाव वास्ते अपने बड़ा बड़ा आंदोलन की जरूरत भी निवे सर। अपना चावा तो रोजमर्रा की छोटी आदता है वही बहुत बड़ो बदलाव आने में लाई सके हैं सा। सबू पहला अगर आप बात करा मिट्टी और पानी रो बचाव तो देखो रासायनिक खाद की जगह आप जैविक या पे केचुआरी खाद है अंडो आप इस्तेमाल कर सका हाँ सा। यो मिट्टी की सेहत और उन्हें पानी की सोख वाली क्षमता है इन्हें भी बढ़ावेगा सा।
1: देखो सा अपना पर्यावरण का वास्ते जो दुश्मन सबों बड़ो है वो है प्लास्टिक।
0: बिल्कुल
1: अपना बाजार में आवा वाले जो भी जितने भी तरह का प्लास्टिक है उनमें एक बार इस्तेमाल वाला प्लास्टिक है इन्हें आप ठुकरा देना चाहे
0: हाँ।
1: और अपने जो है कपड़ा का थैला है जूट का थैला है
0: हाँ।
1: ये काम में लेना चाहे सा।
0: बिल्कुल सही बात की सा। और अंडेला बात करा कि जल संरक्षण कणी तरह करना चाहे सा। घर आस पड़ोस में भी अगर बारिश और पानी है तो वे भी सहजने वास्ते छोटा छोटे अपने प्रयास करना चाहे सा ताकि पौधा में पानी देता समय आप बाल्टी है मग्गा है इस्तेमाल भी आप कर सका हाँ न कि आप पाइप रो भी इस्तेमाल करना हाँ सा।
1: देखो साहब पेड़ पौधा लगाओ का अपना संकल्प लेना चाहे आप आओ आ जो वर्कारी टेम है यानी टेम पे आस पास में अपना घर का बड़े अपना खेत कूड़े बाड़ा और महीने जो है आप पेड़ पौधा लगावा यह जरूरत अपने ध्यान में रखता दिखाई करनी चाहे क्योंकि स्थानीय जलवायु है वन का अनुकूलन रह वास्ते अपने नीम है खेजड़ी है पीपल है अणा का पेड़ पौधा लगाना चाहे और वहाँ की देखभाल को संकल्प अपने लेना चाहे सा।
0: बिल्कुल सही बात की सा। और देखो अपने हाथे आते अपने मिट्टी रो जी सेहत है वनों भी पूरा ध्यान रखना है रसायन के बजाय आप जैविक खाद है पचे प्राकृतिक तरीका है इन्हें भी अपने अपने के करना है कि बढ़ावा देना चाहे सा जन कोई वेगा कि अपनी जो धरती है वह वनडी उपजाऊ क्षमता में बढ़ती जाएगा सा।
1: पर्यावरण दिवस रे मौका पे अपने बाल बच्चा का लारे जो है घना हारा कार्यक्रम आप ही करा ताकि जो बच्चा का लारे करवा रहा उद्देश्य यो है कि यही पीढ़ी आगे जाए जो है जिम्मेदारी संभालेगा तो वे पर्यावरण के प्रति

0: अनिता भाई साहब राजस्थानी गीत सुनाए साहब। और अब कार्यक्रम में आज देखो आप घनी हारे वाता की दी, आप खेती बाड़ी संबंधी जानकारी दी दी, मौसम संबंधी जानकारी दी दी, सरकारी योजना की जानकारी दी दी है और विश्व पर्यावरण दिवस की जानकारी भी दी दी है सर।
1: बिल्कुल सर,
0: जानकारी देवार वास्ते और भी है पर घड़ी हमू नाला तब कार्यक्रम जावारी टाइम वेरी है। तो चालासा जय जवान
1: जय किसान।

अभी आपने सुना किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती और घर। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, प्रस्तुत है ये गाना जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज ने। फिल्म है आई मिलन की रात।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गाना। फिल्म है मीरा का मोहन और इसे गाया है सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल ने। तो गाना पहुंचाते हैं आप तक।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्व

0: सूचना दें, और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं, अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और ये है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गाना अनुराधा पौडवाल और सुखविंदर सिंह की आवाज में। फिल्म है राधा का संगम।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला नगमा किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है पिघलता आसमान।

आपने सुना ये गाना, आइए सुनवाते हैं आपको अगला गीत अलका याग्निक की आवाज़ में, और फिल्म है सूर्या।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को हैं। आइए जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से। वहां से सुनेंगे समाचार संध्या और 9 बजे होंगे समाचार अंग्रेजी में न्यूज़ @9। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं

देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टॉल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
3: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले

0: अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए। शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable

0: energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
1: Surat sirf swachhta aur circular economy tak hi simit nahi hai balki green growth ke dusre madhyamon ka bhi abhutpurva gati se vistar ho raha hai. Surat aisi vyavastha banane mein juta hai jahan sadkon par chalne wali sari basein electric hogi. Saath hi yahan Surat metro ka bhi vistar ho raha hai. ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
0: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
1: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक

0: final execution stage. Pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final in Japan. And that is all in the news at 9. Good night.
1: श्रोताओं, यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी के 90 सुनहरे वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष में आकाशवाणी उदयपुर द्वारा विशेष कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी के 90 सुनहरे वर्षों के पूर्ण करने के उपलक्ष में आकाशवाणी उदयपुर द्वारा गत 15 मई को EIR 890 म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। यह आयोजन बप्पा रावल सभागार मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के अंतर्गत किया गया। इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट के मुख्य कलाकार थे डॉक्टर देवेंद्र सिंह हिरन।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। साजों की लय सुरों की रवानी लेकर आए हैं, साजों की लय सुरों की रवानी लेकर आए हैं। आज की शाम हम आकाशवाणी की कहानी लेकर आए हैं। मैं आकाशवाणी हूँ, हर दिल की कहानी हूँ। सुर संगीत और शब्दों से भारत की जुबानी हूँ। कभी गज़ल, कभी लोक धुन, कभी संदेश सुहाना हूँ। जन जन तक जो पहुँच सके वही मधुर तराना हूँ। नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आकाशवाणी उदयपुर की ओर से आयोजित इस संगीतमयी शाम में AIR@90 म्यूजिक कॉन्सर्ट। आकाशवाणी जहाँ सुरों को मिलता है सम्मान का आसमान, जहाँ संगीत बन जाता है दिलों की पहचान, और यही आकाशवाणी 8 जून सन 2026 को प्रसारण के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे करने जा रही है, जिसके उपलक्ष में ही सजाई गई है आज गज़लों की महफिल। कभी गीत, कभी गज़ल, कभी संस्कृति की कहानी हर धड़कन में बसती है आपकी और हमारी आकाशवाणी। तो आइए आपकी तालियों की गूंज के साथ ही आगाज करते हैं आज की इस महफिल का। एक वादा हमारा ये है कि इफ्तिदा से इंतहा तक आप गज़ल के नशे में रहने वाले हैं। हमारे बीच डॉक्टर प्रेम भंडारी जी हैं और उन्हीं की पंक्तियां आप सभी से साझा करती हूं कि छिपी हैं अनगिनत चिंगारियाँ लफ्ज़ों के दामन में, छिपी हैं अनगिनत चिंगारियाँ लफ्ज़ों के दामन में, ज़रा पढ़ना गज़ल की ये किताब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस किताब का सबसे पहला पन्ना आप सभी के सामने खोलते हैं, यानी इस महफिल का आगाज़ कर रहे हैं शमीम जयपुरी जी के लिखे कलाम से। मौसिकी डॉक्टर देवेंद्र हिरन जी की ही है। आपकी तालियों के साथ आज की ये पहली प्रस्तुति आप सभी के पेशे खिदमत है।

क्या बात है, इश्क पे जब शबाब होता है सारा आलम शराब होता है। कहते हैं गज़ल में हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल कहानी होता है। कौन कहेगा कि इश्क की बात से शुरू होती है गज़ल, जाते जाते कह जाती है कि नाव साहिल पे डूब जाती है जब मुकद्दर ख़राब होता है। कहते हैं जब शायरी सुरों से मिलती है तो गज़ल जन्म लेती है। ऐसे एहसास हैं जो कभी इश्क बनकर तो कभी दर्द बनकर दिल की गहराई में बस जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली गज़ल की तरफ। ये कलाम है राहत इंदौरी साहब का। वो लिखते हैं कि सारी फितरत तो नकाबों में छिपा रखी है, सिर्फ तस्वीर उजालों में लगा रखी है। इस गज़ल की मौसिकी भी डॉक्टर देवेंद्र हिरन जी द्वारा ही तैयार की गई है। इससे पहले गौर फरमाइएगा कि नकाबों के पीछे भी सच झलक जाता है, नकाबों के पीछे भी सच झलक जाता है, फितरत किसी की छिपाई नहीं छिपती।

0: राहत इंदौरी साहब का कलाम आप सुन रहे थे। नकाबों में छिपी हुई फितरत की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन आज के हमारे फनकार ने अपने भीतर जो दो शख्सियतें छिपा रखी हैं वो कमाल हैं। अदालत में शब्दों का जादू चलाते हैं और महफिल में सुरों का। एक बार आप सभी की तालियां यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगली।
1: आपने एक शेर पढ़ा तो मैं भी एक शेर पढ़ देता हूँ।
0: जी बिल्कुल इरशाद।
1: कि फिक्रे दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ।
0: इस बार कलाम है, ये कलाम है अली अहमद जलाल साहब का, मौसिकी डॉक्टर देवेंद्र हिरन जी की भी ही है। कोई आहट कोई सदा ही नहीं, क्या कोई शहर में बचा ही नहीं। गौर फरमाइएगा कि कोई हलचल है न आहट न सदा है कोई, कोई हलचल है न आहट न सदा है कोई, दिल की दहलीज पे चुपचाप खड़ा है कोई।

कोई आहट कोई सदा ही नहीं, क्या कोई शहर में बचा ही नहीं। ये कलाम था अली अहमद जलाल साहब का, तन्हा जिंदगी के जख्मों का जिक्र करती ये गज़ल। गौर फरमाइएगा कि किताबों के पन्नों से पलट कर सोचती हूँ, यूँ पलट जाए मेरी ज़िंदगी तो क्या बात हो। ख्वाबों में रोज़ मिलता है जो, हकीकत में मिल जाए तो क्या बात हो। कुछ मतलब के लिए ढूंढते हैं मुझको, बिना मतलब के जो आए तो क्या बात हो। आप सभी की तालियां आज के हमारे फनकारों के लिए। और ये डॉक्टर देवेंद्र हिरन जी द्वारा प्रस्तुत आज के इस गुलदस्ते की आखिरी गज़ल थी। 10 मिनट का ब्रेक हम ले रहे हैं, अल्पाहार के लिए आप बाहर आमंत्रित हैं। बस आज के फनकारों का सभी का बहुत शुक्रिया। एक मंच से सीख कर आई थी, जब मुझे ये कहा गया कि एक सच्चे कलाकार की जीत उसमें है कि जब वो मंच पर आए तो अपनी प्रतिभा को तो सब तक पहुंचाए ही, लेकिन अपने संगतकारों अपने साथी कलाकारों की चमक को कभी भी कमज़ोर न पड़ने दे। ऐसा ही आज हमने स्टेज पर देखा, जो छोटे छोटे म्यूज़िक के पीस हमें नज़र आ रहे थे, सुनाई दे रहे थे। आप सभी की तालियां हमारे सभी संगतकारों के लिए, हमारे फनकार के लिए, और स्पेशली

0: डॉक्टर देवेंद्र हिरन जी के लिए जाते जाते इतना ही कहेंगे, बहुत सारी वकालत की शायरियाँ ढूंढ कर लाई हूँ सर के लिए, और ये आपके लिए कहेंगे कि कभी कानून की भाषा तो कभी संगीत की तान, हर अंदाज में कमाल है हमारे आज के मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के सुनहरे सफर पर आयोजित म्यूजिकल कॉन्सर्ट AIR 890 के प्रथम भाग का प्रसारण।

0: आकाशवाणी के 90 सुनहरे वर्षों के पूर्ण करने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी उदयपुर द्वारा गत 15 मई को AIR 890 म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। यह आयोजन बप्पा रावल सभागार मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के अंतर्गत किया गया। इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट के मुख्य कलाकार थी डॉक्टर पामिल भंडारी।
1: हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन। आज की इस महफिल को सजाया गया है आकाशवाणी उदयपुर की ओर से आप सभी के लिए। 8 जून सन 2026 को आकाशवाणी प्रसारण के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे करने जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में ही सजाई गई है आज गजलों की महफिल। और अब सेकंड हाफ में आप सभी का स्वागत करते हैं। और अब हमारे बीच हमारे आज के फनकार स्टेज पर पधार चुके हैं, डॉक्टर पामिल मोदी और डॉक्टर प्रेम भंडारी जी। सभी संगतकारों के साथ आज सारंगी पर संगत कर रहे हैं विजय कुमार धांधड़ा जी। हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं इस वक्त प्रेम भंडारी जी। और मीठालाल जी वर्मा भी शहनाई के साथ हमारे साथ हैं। संतूर पर संगत कर रहे हैं भूपेंद्र गंधर्व जी। और तबले पर साथ दे रहे हैं श्री संजय जी वर्मा। आप सभी यहाँ मौजूद हैं, आपकी तालियों से आपकी मौजूदगी का एहसास कराएंगे।

संगीत की विद्यार्थी होने के नाते एक ही ध्येय होता है कि सुर ठीक लग जाए, अगली जो अंतरा है वो इसी पे ही है। उन सभी संगीत विद्यार्थियों के लिए जो यहाँ बैठे हैं, मैं देख रही हूँ MLSU से बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो ये आपका और हम सबका यही ध्येय

अगली रचना जो है वो है शुजा खावर साहब की, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, हर सुर में है रंग झनकता तेरे नाम। एक संगीत से जुड़े किसी भी कलाकार के पास सबसे बड़ी पूंजी होती है उसके सात सुर, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब वो कलाकार अपने ये सात सुर अपने श्रोताओं और दर्शकों के नाम कर दे। तो अब ये सात सुर आपके नाम करने वाले हैं हमारे आज के फनकार, और मज़ा तब आए जब हिसाब बराबर का हो। आपकी तालियां हमारे फनकारों के लिए।

आइए अब बढ़ते हैं अगली जश्न की तरफ। अगली गजल ये कलाम प्रेम भंडारी जी का ही है और मौसिकी भी आपकी ही है। तो अब जब हमारे फनकार अपने आप को पूरी तरह से आपको समर्पित कर ही चुके हैं, तो आप भी पूरी तरह से इनकी कैद में आ ही चुके हैं, तो क्यों ना अब बैठा जाए आमने सामने। आइए बैठिए आमने सामने, गुफ्तगू कीजिए आमने सामने।

बहुत छोटी सी बहर की ये गज़ल है और डॉक्टर प्रेम भंडारी जी ने लिखी है। मैं चाहूँगी कि आप इसमें मेरे साथ गाएं तो मुझे अच्छा लगेगा।

आखिरी शेर जो पेश कर रही हूँ वो इस महफिल के लिए नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई अलग अलग तरह के लोगों से मिलना होता है और कुछ कुछ उनके विचार कह लीजिए या उनके एक्सपर्ट कमेंट्स कह लीजिए, तो उस पे मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो इनके शेर पढ़ रही हूँ, ये मेरे मन की बात नहीं है।

थोड़ा जोर से, यहाँ सभी अच्छा गाते हैं मुझे मालूम है, मेरे इधर भी और इधर भी सब अच्छे अच्छे गायक कलाकार बैठे हैं, खाली आमने सामने बोल रहे हैं।

0: शुक्रिया
1: भाई। जब गुफ्तगू करने वाला इतना सुरीला हो तो क्यों ना बैठा जाए आमने सामने। रात भर चलती रही उनसे गुफ्तगू, रात भर चलती रही उनसे गुफ्तगू, न दिल भरा और न बातें कम हुई। एक बार ज़ोरदार तालियां आज के हमारे फनकारों के लिए। मोहब्बत का इजहार करती ये गज़ल कहाँ जाकर ख़त्म हुई। और अब अगली गज़ल जिसमें मोहब्बत भी है और उदासी भी है, कलाम परवीन शाकिर का है। गौर फरमाइएगा कि पीड़ जब दिल से निकलकर शायरी में आएगी, पीड़ का मतलब दर्द, पीड़ जब दिल से निकलकर शायरी में आएगी, एक संजीदा गज़ल तहरीर से ढल जाएगी। ये अगली गज़ल परवीन शाकिर का कलाम है जिसमें मोहब्बत है और कहीं उदासी भी है।

कहते हैं कि इश्क हमेशा मुकम्मल हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। सूख गई जो डाली उस पर फूल नहीं खिलते, इस दुनिया की रीत है जिसे चाहो बस वही नहीं मिलते। और अब आज के इस ख़जाने का आखिरी नजराना आप सभी के लिए, हम सभी की जानी पहचानी सी गज़ल है जो जगजीत सिंह साहब और लता जी की आवाज़ में बहुत मकबूल हुई। ये कलाम शाहिद कबीर साहब का है। तो ये अगली गज़ल आप सभी के लिए पेश खिदमत है, ये आखिरी नजराना आज की इस शामे गज़ल की महफिल का।

0: एक बार तालियां इस पूरे प्रांगण में गूंजनी चाहिए, सभी की तरफ से पीछे तक। अगर आपका आकाशवाणी से रिश्ता है, कोई भी संबंध है, एक श्रोता के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, किसी भी तरह से अगर आकाशवाणी से जुड़ाव है, तो इस 90 वर्षों के सफ़र में हम सभी भागीदार बन रहे हैं। और जितने भी फनकार आज मंच पर मौजूद हैं, उन सभी का आकाशवाणी से एक अटूट रिश्ता है। मुझे लगता है इस मंच पर आकर उन्हें अपना पहला दिन याद आता होगा, जब हाथ कपकपाए होंगे, होठ थोड़े से थरथराए होंगे, लेकिन फिर भी सभी के साथ आज इस मंच पर आप मौजूद हैं। एक बार आप सभी की तरफ से बहुत ज़ोरदार तालियां आकाशवाणी उदयपुर की पूरी टीम की ओर से। तो ये नजराना था आकाशवाणी उदयपुर की ओर से आप सभी संगीत प्रेमियों के लिए, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण करने के उत्सव के रूप में आज की ये महफिल सजाई गई आप सभी के लिए। सुर, शब्द और एहसास के इस कारवां को अब यहीं विराम देते हैं। आप सभी फनकारों का, संगतकारों का तहे दिल से शुक्रिया।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के सुनहरे सफर के पूर्ण होने के उपलक्ष में आयोजित संगीत समारोह का प्रसारण AIR 890 का दूसरा और अंतिम भाग।
2: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आपको सुनवाते हैं नवरंग फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का सफर बस यहीं तक। सुनिए ये गाना।

ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से। वहां से सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर होंगे समाचार अंग्रेजी में। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए

अत्यधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।